0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: का उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो फटाफट एक छोटा सा कॉल कर आप अपने हाल चाल बता सकते हैं। मेरे बारे में आप पूछ सकते हैं कि गगन आप कैसे हैं। नंबर है वही जाना पहचाना 01204060205, अर्थात 120-40-60-205 के जरिए आप हमसे तालमेल जोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और

शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गगन अकेला है या कोई मेरे साथ खास मेहमान है, तो चलिए ज्यादा मैं देर आपको नहीं कराऊंगा, मैं उनके बारे में बताऊंगा जरूर। लेकिन एक खास विषय है जिसके बारे में अक्सर हमने सुना है, जाना है, समझा है, लेकिन उसको जब आप डिटेल में जानेंगे तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। थोड़ा सा छोटा सा इशारा कर देता हूं, CSR ये क्या है, किस तरीके से काम करती है धरातल पर, इसी के बारे में जानेंगे। और इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, वो कौन है कहां से बताऊंगा जरूर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था सीएसआर क्या है, ये किस तरीके से काम करती है और सरकार क्या कहती है, इसी के बारे में बात करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है और जाहिर सी बात है कि वो एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं सीएसआर हेड वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: कैसे हैं सर आप?
1: मैं ठीक हूँ सर।
0: तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत के साथ सत्कार के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और यही दिमाग में मेरे आता है, जैसे अभी देशराज जी से मेरी ऑफेयर बात हो रही थी कि लेमैन की तरह हम बात करेंगे, एक जनमानस क्या सोचता है सीएसआर के बारे में, वो जानना चाहता है कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। सीएसआर के बारे में अगर आप परिभाषित करें तो किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे?
1: देखिए, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बहुत आसान भाषा में अगर बात करें तो सन 2013 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पास किया जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कॉरपोरेट्स हमारे भारत में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं या गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उनको उनकी सामाजिक जिम्मेवारी के प्रति जागरूक करना और वो कुछ एक्शन करे उस बारे में। तो वो पहले सारी कंपनियां कॉरपोरेट्स घराने जो हैं वो अपने हिसाब से चैरिटी वगैरह करते रहते थे, बट अब इस कानून की माध्यम से ये उनके लिए करना मैंडेटरी हो गया। तो अगर आप देखें तो हर 3 साल में के एवरेज प्रॉफिट के 2% अमाउंट जो आता है कंपनी का
0: जी,
1: वो उसको सीएसआर में मैंडेटरी यूज करना होता है एज पर लॉ। तो काफी सारी कंपनियां इसको समुदाय स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, आपका रूरल डेवलपमेंट है, आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है
0: जी,
1: देन लिवलीहुड प्रमोशन है,
0: राइट,
1: ओल्ड एज केयर है, तो ये सारे विषय बहुत सारे बिंदु है इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो शेड्यूल 7 में लिस्टेड है, तो वो सारी एक्टिविटी पे ये खर्च करना होता है।
0: जी जी। सो लिसनर्स, अगर मैं इसको समराइज करूं, इसका एक निष्कर्ष निकालूं तो बात निकल कर ये सामने आती है, मैं भी थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि लोकसभा द्वारा संशोधन विधेयक 2019 में ये पारित किया गया था और जो आप जानकारी दे रहे हैं वाकई बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि यही रिसर्च में निकल कर भी आ रहा था। सो इसके जो मायने हैं लिसनर, सीएसआर यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कौन कौन से वो बिंदु हैं जो सर ने हमें बताया उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जरूर जानेंगे। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। और इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रियेश राठौड़ जी जो कि हेड हैं सीएसआर वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
2: सारे शहर में नाम तुम्हारा दीवारों पे लिखता है।
3: ये टाइम नहीं है सबके लिए, सबके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। एक अच्छा सोल्जर बनना चाहता हूँ।
4: किसने रोका?
2: सारे

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। एक खास विषय है जिस पर हम बात करने के लिए आज जुड़े हुए हैं मेरे साथ एक मेहमान के तौर पर जो कि सीएसआर वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से आते हैं, आप उसके हेड हैं श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: हिंदुस्तान का जो एक कल्चर रहा है तो सर हम कहते हैं कि आपने कुछ कमाई की है तो उसका 10वां भाग सामाजिक कार्यों में लगाएं। कहते हैं कि एक हाथ से आपने कमाई की या यूं कहें कि दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए जब आप सामाजिक कार्यों में लगा रहे हैं। यहाँ जो कल्चर हम देखते हैं यहाँ दिखावा बहुत ज्यादा होता चला जाता है, क्योंकि हम भी ग्राउंड पर जाते हैं, लोग भी इस बात को जानते हैं समझते हैं। तो जब लोग काम कर रहे होते हैं शोशेबाजी भी बहुत हो जाती है, फोटो सेशन हो जाता है। एक विषय है जिसमें पारदर्शिता का जिक्र हुआ है जो हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर एज फार एज सीएसआर कंसर्न, क्योंकि ये कोई चैरिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कॉर्पोरेट की टुवर्ड्स द कम्युनिटी वेयर दे आर वर्किंग। ठीक है, तो उस समाज के प्रति आपको कुछ ना कुछ करना है, उसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो एज अ सीएसआर हेड हमें ये देखना है कि कंपनी जो पैसा खर्च कर रही है वो वास्तव में उस जरूरतमंद समुदाय के पास पहुंचे, और ये ज्यादातर हम लोग सुनिश्चित करते हैं जिसमें हमारी मदद, अधिक से अधिक मदद जो लोकल एनजीओज होते हैं जिनकी खासी पकड़ रहती है समुदाय के ऊपर, जान पहचान रहती है विलेजर्स के साथ, तो उनकी मदद हम लेते हैं कि इसको धरातल पे हम ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली कैसे उतार पाए। सो दीज एनजीओज आर रियली हेल्पिंग अस इन डिलीवरिंग द इम्पैक्ट, एक्चुअल इम्पैक्ट दैट व्हाट वी डिजायर।
0: वाकई बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, जो कि मैं आपसे उम्मीद भी कर रहा था। इस बात को मैं समझना चाह रहा था क्योंकि मेरे जरिए वो लिसनर समझना चाह रहे थे, क्योंकि जब वो ग्राउंड पे जाते हैं हम उनको जब इकट्ठा करते हैं तो कुछ कुछ समस्याएं भी आ रही होती हैं। चूंकि आपने अपनी कंपनी का जिक्र किया तो थोड़ा आप मुझे उसके बारे में बताएं कि ये जो कंपनी है जिसके आप हेड हैं किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप ग्राउंड में जाते हैं, क्या काम करते हैं?
1: सो बेसिकली गगन भाई, इन इंडिया वी आर ऑपरेटिंग हाईवेज, हम लोग हाईवे मैनेज करते हैं, तो तकरीबन मोर देन 8000 लैंड किलोमीटर वी आर ऑपरेटिंग राइट नाउ एंड वी आर हैविंग आवर प्रेजेंस इन मोर देन 10 स्टेट्स। तो इन 10 स्टेट्स में कुछ हाईवेज हैं जो हम ऑपरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं, तो ये हमारा कोर बिजनेस है। अगर मैं सीएसआर की बात करूं तो यस, जहां जहां पर भी हमारे असेट्स हैं उसके आसपास की जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे, उनके हेल्थ केयर पे, उनका लेवलीहुड कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं उसके ऊपर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप सुने होंगे मैंग्रोव्स के बारे में, मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में।
0: जी जी, मैं इसको डिटेल में जानना चाहूंगा आपसे, आप प्लीज बताइए।
1: तो मैंग्रोव इन गुजरात इन द क्रीक ऑफ खंबात वी हैव क्रिएटेड मोर देन 300 हेक्टर ऑफ ग्रीन कवर थ्रू मैंग्रोव प्लांटेशन।
0: ओके,
1: सो उसके फायदे ये है कि इट नॉट ओनली जनरेट लोकल लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटी विच इन्वॉल्व इन प्लांटेशन एंड ऑल दिस स्टफ, बट उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल बेनिफिट है वो काफी हाई है। पूरे जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम को वापस रिस्टोर करना, मैंग्रोव आपको पता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्बन सिक्वेस्टर करते हैं, ठीक है, बाय एनी अदर प्लांट। तो जो आजकल हम CO2 एमिशंस की बात करते हैं या जो ग्रीन कवर हमारा कम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उसमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो ऐसे
0: जो पौधारोपण आप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित करता है जिस पौधे का आप जिक्र कर रहे हैं, तो लिसनर्स इस तरीके से मैंने समराइज करके ये बात आप तक पहुंचा दी। बाकी बहुत अच्छा एक विषय है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या क्या काम किया जाता है, बहुत विस्तार वाला एक क्षेत्र है, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, और ये काम मुझे लगता है कि ये पहले क्यों नहीं शुरुआत हुई इस चीज की। जो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा कि भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि आप भला कीजिए भला होगा, एक लाइन के साथ वो बातें सर हमारे सामने आती हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, और सरकार ने ये एक अच्छा प्रयास किया है जो आज हमारे सामने है, तो निश्चित तौर पर ये आगे भी जाएगा और लोगों के हित में काम करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, सो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। एक विषय है, एक सब्जेक्ट जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के CSR के हेड हैं, आप हैं श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: सर हमारा रेडियो पहले बात करता है फिर म्यूजिक सुनाता है। आपकी जिंदगी में भी कभी कभी तनाव बहुत ज्यादा हो जाता होगा है? कौन सा एक गाना जो आपके दिल के आसपास रहता है वही गाना हम प्ले करेंगे। मुझे लगा कि पहले बात में यहीं से शुरुआत करता हूँ, मुद्दे पे तो आता ही रहूंगा कि आप गाते भी होंगे, गुनगुनाते होंगे।
1: मैं अगर मेरी बात करूं तो कॉलेज के दिनों में काफी शौक रहा करता था मुझे गानों का।
0: अभी भी कॉलेज के इतनी है सर आप
1: बच्चे कॉलेज जाने लगे हैं उस उम्र के तो मैं थोड़ा आपने जैसे ही गाना बोला मैं रिकॉल करने लगा कि मुझे क्या क्या गाने पसंद थे।
0: जी जी
1: ठीक है, मेरे समझ में जो अभी तो खैर कॉर्पोरेट लाइफ में वो सब कहीं भूल से गए हम लोग गाना गुनगुना।
0: कोई भी आसपास होगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, नेचर के लिए।
1: मैं जब फिल्में वगैरह ज्यादा देखता था वो 90 का दशक था और उस समय आई थिंक एक मूवी आई थी अकेले हम अकेले तुम शायद
0: आमिर खान मनीषा कोइराला
1: का एक गाना है कि दिल कहता है चल उनसे मिल उठते ही कदम।

0: रुक जाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ और जो टॉपिक है उस पर मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल दोस्तों ये गाना प्ले करते हैं और ये हमारे जो गेस्ट है उनकी फरमाइश है। और वाकई मुझे लगता है कि स्ट्रेस तनाव बहुत आसपास रहता है जिंदगी में, खुशियां भी हैं गम भी हैं, लेकिन गम को भुलाने के लिए एक म्यूजिक ऐसा जरिया जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और यकीन मानिए कि मेरे मेहमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब मैंने गाने का जिक्र किया है। और आप जब ये ब्यूटीफुल ट्रैक सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी पुराने दौर में चले जाएंगे। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर जुड़े हुए CSR वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के आप CSR डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: थोड़ा चैलेंजेस के बारे में मैं अगर आपसे जानूं कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, एनजीओ से मिलते हैं, सरकार की कुछ योजनाएं हैं आप आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि कुछ कुछ नया और आए, नए बदलाव आए, या कुछ चैलेंजेस जो आपने फील किए हैं तो अगर आप हमारे लिसनर्स को बताएं तो वो मैं भी समझ पाऊंगा कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं।
1: जी बिल्कुल। सो गगन जी, ये बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है जो हम CSR में जो हम काम करते हैं। तो कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में तो प्रायोरिटी रहती ही रहती है, बट उसके साथ साथ काफी चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी हम कभी कभी महसूस करते हैं। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो कई बार कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम्स चलती रहती
0: हैं,
1: आवास योजना है या आयुष्मान कार्ड है, कई बार हम ये सामना करते हैं कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जो जरूरतमंद है उसको पहले मिले सेवाएं।
0: जी,
1: अब कुछ गवर्नमेंट स्कीमें भी रन हो रही है पैरेलल, कुछ हम भी हेल्थ कैंप वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में हम लोगों को एलोकेट करना पड़ता है वो फंड, ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, अदरवाइज जो काम गवर्नमेंट कर रही है वही आप भी कर रहे हो, तो आप उसी चीज को दोहरा रहे हो और आप पैसा भी वेस्ट हो रहा है उसमें। सेकेंड, जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं CSR के थ्रू वो हम नीड बेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है, जहां कोई स्कीम नहीं पहुंच पा रही
0: है, बहुत अच्छा,
1: तो वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो एक्सक्लूडेड कम्युनिटी है, जो जिन तक लाभ पहुंच नहीं पाया, उनको भी हम शामिल कर सके इसमें। लिमिटेशन कई बार ये होती है कि हमारे पास भी बहुत लिमिटेड किटी होती है। ठीक है, अब वो उस लिमिटेड किटी में बहुत लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, तो कई बार हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं।
0: वो किसकी रिक्वायरमेंट आती है, आम जनमानस की?
1: जैसे कि जनरली दो तीन चीजें होती है उसमें। आम जनमानस डायरेक्टली हम तक वही पहुंचता है जो हमारे प्लांट्स या हमारे एसेट्स के आसपास रहता है।
0: जी,
1: इन माय केस वी आर हैविंग हाईवेज, तो हाईवेज के आसपास जो गांव बसे हुए हैं या लोग बसे हुए हैं, तो वो हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो वो आते हैं अपनी डिमांड लेकर,
0: जी,
1: कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट लेकर के, हमारे गांव में स्कूल बना दीजिए, हमारे गांव में कुछ शौचालय बनवा दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
0: जी,
1: कुछ होती है हमारे स्टेक होल्डर के तरफ से, जैसे कि वहां के लोकल DM हो गए, पुलिस अधीक्षक हो गए, तो उनको कुछ लगता है कि भाई इस एरिया में कुछ सुधार लाने की जरूरत है, तो वो भी हमें अप्रोच करते हैं।
0: वेरी गुड।
1: मेजरली जो NGO पार्टनर्स हैं वो अलग अलग प्रपोजल्स लेके आते हैं हमारे पास साल में, तो ये वो महीने होते हैं जनवरी से लेके मार्च तक जब हम पूरा फाइनेंशियल ईयर का प्रिपरेशन करते हैं इन सब रिक्वेस्ट लेटर्स के साथ।
0: वेरी गुड। सर कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बॉडी है, या जो मैं बात कर रहा था कि आप और हम यानी कि जनमानस, लोग अवेयर तो हैं, लोग काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, और वो NGOs की बात हो, CSR की बात हो, तो इसका मतलब उनके भी दिमाग में है कि कोई एक ऐसी चीज है, एक फंड आता है और इस तरीके से वो सामाजिक कार्यों में लगता है। तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने सुनो शारदा 90.8 FM को चुना है, अपने मन की बात आप यहाँ कह रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में बातें बता रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं लिसनर्स, और चूंकि बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, कुछ और बातें अगर निष्कर्ष निकलना बाकी है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में हमारे जो हेड साहब हैं श्री प्रियेश जी, उनसे जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुरक्षित चलिए, सुरक्षित पहुंचिए। हर रोज मैं सुनु शादा 90.8 FM पर एक अपील आप लोगों से कर रहा होता हूँ। रोड रेस की घटनाएं होती हैं, अमूमन इतने झगड़े बहुत बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से जनधन हानि हो जाती है। सुरक्षित चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने फैमिली के पास पहुंच पाएंगे, सुरक्षित नहीं चलेंगे तो कभी कभी आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सुरक्षित नहीं चलेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ताउम्र हमें एक पछतावा होता है क्योंकि आपके शरीर का अंग भंग हो चुका होता है कि काश उस वक्त मैंने रोड सेफ्टी के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन किया होता। नमस्कार, एक बार फिर से शुरू शादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये एक विषय आता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ऑफ एयर अभी इसी के बारे में हम बात कर रहे थे सर से, तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ स्टूडियो में आज एक खास मेहमान है। शुक्रगुजार हूं मैं देशराज सर का जिन्होंने ये एक साक्षात्कार हमें दिलवाने का मौका दिया। और हम बात कर रहे हैं वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के CSR हेड हैं श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गंभीर मुद्दा है रोड सेफ्टी वाला, रोड एक्सीडेंट वाला, लोग नहीं मानते, लोगों को पता है कि हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। मैं खुद रोड सेफ्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ जो कि मैं हरियाणा से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन चीजों को मैं नजदीकी से देखता हूँ। यही वजह है कि मैं रेडियो पर भी लगातार बोल रहा होता हूँ। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो CSR आपकी एक्टिविटी है, इसके तहत जब आप काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरीके के आंकड़े हैं, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका अनुभव क्या कहता है सर?
1: देखिए गगन जी, अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे पूरे देश के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि हर साल इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा मौतें होती है सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से।
0: जी,
1: उसके दो पहलू हैं। एक तो है कई कई जगह पे इंजीनियरिंग इश्यूज हैं रोड्स में, हाईवे।
0: ये तो नितिन गडकरी साहब ने कहा है सबसे बड़ा इश्यू है।
1: दूसरा जो बहुत बड़ा इश्यू है वो है लोगों का बिहेवियर।
0: ये भी
1: ठीक है, आप सड़क पे देखोगे कितने सारे टू व्हीलर्स, उसमें से

0: अपने हेलमेट लगाते हैं
1: जी,
0: सेफ्टी हेलमेट, हेलमेट लगाती भी है तो वो ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए, आप देखना उसकी बेल्ट तक सीधी नहीं बांधी जाती है।
1: सही ऑब्जर्वेशन सर, बिल्कुल सही कहा।
0: तो हमारा क्योंकि हम हाईवे सेक्टर है हमारा, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस करें। उसके लिए हम कैंप्स लगाते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हेलमेट्स वगैरह भी, उसके रेडियम। आप यूपी में अगर अभी देखो तो फॉग का मौसम है, विजिबिलिटी बहुत कम है, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है गाँव गाँव जाकर, स्कूल में, कॉलेज में जाकर, इंटर कॉलेज में जाकर लोगों को, बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में सिखाएं
1: जी।
0: उनको यातायात के नियम हम बताते हैं, डूज एंड डोंट्स, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जान हम बचा सकें बिहेवियर पे थोड़ा सा सुधार लाके।
1: बेशक,
0: तो ये हमारी एक अहम प्राथमिकता है कि कई बार हमने देखा है कि परिवार में एक ही आदमी कमाने वाला होता है और उसकी रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, फिर उस परिवार पर आप कल्पना कर सकते हैं आप क्या हो जाता है
1: जी।
0: तो ये एक बहुत गंभीर विषय है हमारे देश के लिए, और हम लोग हमारी वी आर डूइंग अवर बिट कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट कर सके आपके माध्यम से।
1: बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि आपकी जान बेशकीमती है, और सर दो लाइनें हैं जो खुद सोची कभी लिखी या यूं कहें कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, सुनो शारदा, कि ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, इस जान पर आपके माँ बाप भाई बहन बच्चे उनका हक है, तो उनकी खातिर अपनी जान का ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपकी सलामती की कहीं ना कहीं दुआएं कर रहे होते हैं। और अगर एक महिला को जब हम देखें भारतीय संस्कृति में, जब एक त्योहार आता है करवा चौथ, वो एक पति की लंबी उम्र की कामना करती है, और जब बहुत अफसोस होता है कि पता चला कि वही व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में इसलिए मारा गया क्योंकि उसके पास हेलमेट नहीं था। अक्सर हमने देखा है सर कि लोग बाइक पर जा रहे होते हैं, महिला पीछे अगर बैठी है तो वो पति का हेलमेट का सामान अपनी गोद में लेकर बैठी हुई होती है, यानी कि वो इतना भी नहीं कह सकती कि प्लीज आप हेलमेट लगा लें क्योंकि ये आपकी जान से जुड़ा हुआ है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारा जो रेडियो स्टेशन है वाकई इसी तरीके के काम करता रहता है, लोगों के बीच में जाता है, लोगों को अवेयर करता है। सो लिसनर्स, मैं दिल की गहराइयों से सर का शुक्रिया अदा करूंगा, और एक बार फिर से मैं आप सबको बताना चाहूंगा CSR हेड जो कि वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के आप हेड हैं, श्री प्रियेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े रहे। तो सर अगर आपको लगता है कि कोई बात छूट रही गगन मैं ये कहना चाहता हूं तो आप कह सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपका और शारदा यूनिवर्सिटी का कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और आपसे बातें करने में बड़ा मजा आया मुझे। एक चीज मैं जरूर की ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सड़क यातायात पे गंभीरता से लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि उससे बहुत सारे नुकसान है हमारे कंट्री को, आर्थिक आपकी खुद की परिवार की जो लॉस है ही है, बट एज अ नेशन हमारी इकोनॉमी पे भी इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब एक युवा की मौत होती है या एक महिला या एक बच्चा एक्सीडेंट में अगर विकलांग हो जाए तो यू कैन इमेजिन
1: जी।
0: सो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से विनंती है कि सड़क पे आप यातायात का नियमों का अच्छे से पालन करें, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट।
1: क्या बात है, आखिर में ये जो संदेश है, ये जो बातें हैं कि आप सभी को दिल से बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं तभी काम करती हैं जब आप सुरक्षित चलेंगे, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो एक बार फिर से सर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक सामाजिक काम आप कर रहे हैं, और जब हाथ से हाथ मिलेंगे तो निश्चित तौर पर हम दोनों आगे ही जाएंगे। तो वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9211, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से वो संपर्क माध्यम मैं आपको बता देता हूं, 120-40-60-205, फिर से दोहरा देता हूं, 120-40-60-205 के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बताएगा जरूर कि ये चर्चा कैसी रही। इसके अलावा मेल के जरिए मेलजोल बढ़ा सकते हैं, 90.8fm@sharda.ac.in के जरिए आप हमें पत्राचार कर सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुले हुए हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुन शादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मैं मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:10 हो चुके हैं। 24 तारीख है यानी कि शुक्रवार, बोले तो फ्राइडे का दिन, और कल सैटरडे यानी कि वीकेंड, और वीकेंड बोले तो सैटरडे की छुट्टी अवकाश और उसके बाद संडे। तो कहीं ना कहीं आज ही लोग प्लानिंग कर लेते कि हम यहाँ जाएंगे, घूमी घूमी करेंगे, और लेकिन बारिश के मौसम में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, आते जाते वक्त कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करेगा। लेकिन जब आप आ जा रहे हैं ऑन रोड, तो ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आज दिल्ली एनसीआर में, खासकर दिल्ली में कहां कहां मेट्रो स्टेशन बंद हैं, कहां कहां रूट डायवर्जन हुआ है, इसके बारे में मालूमात करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि हमारे आसपास और क्या अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए, सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में ये गाना तो बनता है ना, पिया मिलेंगे फ्रॉम द मूवी राज, है ना, राजनीति, और बहुत ही खूबसूरत गाना। और इस गाने को जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो राजना फिल्म का एक गाना है पिया मिलेंगे, और सुखविंदर सिंह की आवाज़ है, इरशाद कामिल के बोल है। सो लेट्स लिसन टू दिस म्यूजिक ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 एफएम गाइस। सो देयर इज रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: अरे डब्बा ले आ।
6: बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
7: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
5: वो
7: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
5: क्या क्या हो बेटिया?
8: डॉक्टर साहब
9: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
10: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
7: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
8: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
9: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
11: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
12: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो श्रोता 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। अभी आपने ब्रेक पर एक जन संदेश सुना कि किस तरीके से हम अपने बच्चों का ख्याल रखें। छह महीने तक बच्चे को, यानी कि मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, उसको कुछ भी ऊपरी आहार न दें, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बहुत जरूरी है। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं और हमारे आसपास क्या खास होता है उसके बारे में भी हम हर रोज डिस्कस करते हैं। जैसे कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इस समय मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौसम में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। किसी को वोमिटिंग की शिकायत है, किसी को सर दर्द की शिकायत है, और जब उमस में आप जा रहे होते हैं, कोई शारीरिक श्रम कर रहे होते हैं, तो सर दर्द की शिकायत हो जाती है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसी संबंध में एक विशेष कार्यक्रम होता है सुबह रेडियो ओपीडी के माध्यम से सुबह 10 बजे। तो ऐसे विशेष कार्यक्रम को सुनने के लिए बस सुनते रहिए। और मौसम का जो मिजाज है वो 24 जुलाई यानी कि आज ग्रेटर नोएडा में मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में छिटपुट गरज के साथ आंधी पानी या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और रेड अलर्ट की भी घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। गुजरात से लेकर अपडेट तो ये भी सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर तक, उत्तर प्रदेश तक मौसम का रेड अलर्ट है, भारी बारिश का अनुमान है। और एक्सपर्ट एक राय भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन बातों को ध्यान रखिएगा, नज़रअंदाज न करेगा, यानी कि पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे आप शरण न लें, अनावश्यक यात्रा से आप बचें, सड़क और ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लेकर ही बाहर निकलें और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी सभी एडवाइजरी का पालन करें। जो एडवाइजरी है, ट्रैफिक एडवाइजरी है, उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो कहीं जाएगा बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी मेरे यानी गगन के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गड्डी बूरे होशो आवाज में जाएगा पल फ्रॉम द मूवी जलेबी, अरिजीत सिंह की आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: अक्सर मोहब्बत कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में ही नहीं होता।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जी खान और जस्मीन अख्तर की आवाज में हर रंग के साथ हम प्रस्तुत होते हैं आपके लिए सुरुशादा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन, आपके साथ 9:33 हो चुके हैं, 24 तारीख है। और क्या है खास, उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। वक्त हाथ से रेत की माफिक फिसलता चला जाता है, लेकिन वक्त पर जब हम सारे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। आने वाला समय आपका है, आप यूथ हैं, आप जेन ज़ी हैं, आप युवा हैं, और जब युवा है तो युवा सोच है, युवा शक्ति है, युवा जोश है। तो मुझे लगता है कि समझदारी से हम आगे बढ़ें। अगर कहीं कोई समस्या है, निश्चित तौर पर उसका समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते यही कहते हैं कि कहीं जान माल की हानि ना हो, किसी को कोई नुकसान हमारी वजह से ना पहुंचे, इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। सरकार एक सीधा रास्ता निकाल रही है और एक अच्छी खबर भी हमारे सामने आ रही है कि आने वाले समय में बहुत सारे नियम कायदे कानून कड़े होंगे ताकि इस तरीके की जो घटनाएं, पेपर लीक की जो बातें सामने आती हैं, आ रही हैं, भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते सिर्फ जन संदेश यही है कि बात करने से बातें बनती हैं और बात बन भी रही है, और आने वाले समय में कानून संसद में लाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास और क्या लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी मौसम के मिजाज के बारे में, और हम बात करना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक एडवाइजरी। कांवड़ का जिक्र हो रहा है, कांवड़ यानी कि जब कांवड़ का जिक्र मैंने कर दिया तो आप भी सुनना चाहते हैं कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, कब रक्षाबंधन होगा। तो सावन का जो महीना शुरू होने जा रहा है वो 30 जुलाई से लेकर समापन होगा 28 अगस्त को, और जाहिर सी बात है जब समापन होता है तो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सावन 17 अगस्त को, चौथा सावन 24 अगस्त को। इस तरीके से सावन का महीना शुरू होगा, कांवड़ यात्रा शुरू होगी। तो ट्रैफिक की जो एडवाइजरी है, ट्रैफिक की जो अपडेट्स हैं, रैली, प्रदर्शन, संसद के मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए ये लेटेस्ट अपडेट मेरे सामने, इसके बारे में जिक्र करेंगे जरूर। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 एफएम। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ, तू हर लम्हा, फ्रॉम द मूवी खामोशियां, अरिजीत सिंह की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ शारदा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

क्या बात है, इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत गिपी ग्रेवाल की आवाज सिर्फ सुरशादा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:43 मिनट हो चुके हैं, 24 तारीख है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में, तो उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर आप आ जा रहे हैं कहीं और रास्ता भटक गए हैं तो दिक्कतें परेशानियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ऐसे समय में ट्रैफिक एडवाइजरी को जब आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि गूगल के माध्यम से एक्स के माध्यम से तो सटीक जानकारी आपको मिल जाती है, या रेडियो एफएम जब आप सुनते हैं तो भी आपको सटीक जानकारी मिल जाती है। तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप मालूम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो मालूम मेरे पास है उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। आने वाला समय जो है कांवड़ यात्रा का है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, कुछ रैलियाँ निकल रही हैं, तो उन सारी बातों को नजर रखते हुए एक्सप्रेसवे पर ये कांवड़ यात्रा के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों और उनके वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी, और जो निर्धारित मार्ग है यानी कि कांवड़ यात्रियों से केवल उनके लिए तय किए गए पारंपरिक और सुरक्षित मार्गों का ही उपयोग करने की अपील की गई है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है जो कट टू कट है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और मानसून सत्र के बारे में जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रभावित मुख्य मार्ग रहेंगे, रफी मार्ग है, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और कापगंज गुरुद्वारा रोड, और प्रभावित मुख्य जो चौराहे हैं विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन, सुनहरी मस्जिद, पटेल चौक, बूटा सिंह और जलेबी चौक। सलाह ये दी जाती है कि इन रास्तों पर सुरक्षा कारणों से कभी भी ट्रैफिक रोका या डायवर्जन किया जा सकता है, इसलिए जरूरी होने पर इधर से आप जाएं, और अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो हेल्पलाइन का आप यूँ कहें कि डायल कर सकते हैं 1095 यानी कि 1095 पर आप आपातकालीन स्थिति में संपर्क कर सकते हैं। सजदा, ब्यूटीफुल ट्रैक, अरिजीत सिंह की आवाज, विशाल मिश्रा का और असीस कौर की आवाज, माफ कीजिएगा अरिजीत नहीं है इसमें, सजदा फ्रॉम द मूवी 21। आए हाय हे, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं। अमिताभ भट्टाचार्य की बोल, सोनी का लेबल, ऑल योर सुरशादा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

सुस्वागतम वेलकम एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:52 हो चुके हैं, 24 तारीख है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में भी जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है कि हमने क्या बात की थी, हाँ हमने बात की थी ट्रैफिक के बारे में बात की थी। हाँ तो ट्रैफिक के बारे में एक और अपडेट है तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार फुटपाथों से अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है और ऐसा बेंगलुरु में हो भी रहा है, यानी कि वहां पर फुटपाथ से जो अतिक्रमण है हटाया भी जा रहा है ताकि लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और वहां की जो गवर्नमेंट है सरकार 500 रुपए से बढ़ाकर जो जुर्माना है जो फाइन है 5,000 करने का वो प्रस्ताव लेकर आई है और जिससे अब होगा क्या कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू करने की बात कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये हमें समझदारी से भी काम लेना होगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि फुटपाथ है तो फुटपाथ पर जाहिर सी बात है कि लोग पैदल चलेंगे ना कि वहां कोई व्हीकल चलेगा। तो समझदारी दिखाइए, आम जन आप भी हैं और आपकी वजह से किसी आम जन को परेशानी ना हो। हमेशा आप गाड़ी में नहीं रहते, हमेशा आप पैदल नहीं चलते, तो ये सब हमें सोचकर समझकर चलना होगा ताकि मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए, नोएडा में 2 साल में सड़कों से 1500 CNG ऑटो कम हुए और वजह कुछ और भी निकल कर सामने आ रही है। हमारे नोएडा में आबादी से दूर रूटों पर खाली दौड़ रही हैं कुछ इलेक्ट्रिक बसें। पहले माह की 1 करोड़ से अधिक का कुछ घाटा सामने आया, ये कुछ लेटेस्ट अपडेट। लेकिन आने वाले समय में कुछ हमारे सामने निकलकर अपडेट्स ये आ रही हैं कि ट्रेड शो जो है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की साफ सफाई का काम चल रहा है, बजट अलॉट कर दिया गया है। तो UP इंटरनेशनल ट्रेड शो की आने वाले समय की बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि दिल्ली NCR हमारा सुंदर रहे, हम चाहते हैं कि परिचौक सुंदर रहे, हम चाहते हैं कि खूब सारे मेले लगे और लोग आए, हम नहीं चाहते कि कोई झमेला हो। गुड मॉर्निंग, 9:54, गुड मॉर्निंग।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बीमारी से मुक्त रहें, सभी की निरोगी काया रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। ओम शांति ही शांति ही शांति। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं, और परवरदिगार से यही कामना करता हूं कि हमारी जो काया है वो निरोगी काया रहे। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में कोई दिक्कतें, परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं, तो निश्चित तौर पर हमें एक विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर की आवश्यकता होती है, वो डॉक्टर जिनको भगवान का रूप कहा जाता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एहतियात बरतना भी बहुत आवश्यकता है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक ऐसा ही विषय जिस पर हम बात करने वाले हैं, सेहत से ही लाभ कई के माध्यम से। स्मार्ट के साथ हमारा एक खास प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी संबंध में हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर विजय गुप्ता जी, जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं न्यूक्लियर मेडिसिन शारदा केयर हेल्थ

0: सिटी से आ पाते हैं, जहां कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज होता है और अत्याधुनिक तकनीकों और अनुभवी विशेषज्ञों की देखरेख में ये सारा काम होता है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गुप्ता। तो सर, आपका सुरोशादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि जो आपने एक विषय चुना है आज कि हम जो है कैंसर का अल्कोहल से क्या संबंध है उसके विषय में आप जानना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ कि शराब, जिसको हम बहुत कुछ लोग मानते हैं कि शराब एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसे थोड़ी मात्रा में लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन शराब की कम से कम मात्रा भी बहुत ही हानिकारक हो सकती है
0: जी।
1: तो मैं इसको शराब नहीं, इसको मैं श्राप बोलता हूँ। ये एक श्राप है जिससे हमें बचना है
0: जी।
1: अब जब मैं कैंसर के पेशेंट का इलाज करता हूँ तो सबसे पहले प्रश्न उनका यही होता है कि सर ये कैंसर हो गया, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया के जितने भी कैंसर हैं उसमें 50% के करीब जो कैंसर होते हैं वो हमारी आदतों से ही होते हैं। और उनमें सबसे प्रमुख आदत है शराब का लेना और जो है तंबाकू का प्रयोग करना। तंबाकू चाहे खा के प्रयोग करें, चाहे उसको जो है सिगरेट के रूप में आप उसको प्रयोग करें,
0: ठीक है।
1: और जब ये दोनों मिल जाते हैं
0: जी,
1: तो ये दोनों मिलके तो और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। जो व्यक्ति दोनों का ही सेवन करता है वो तो बस आप उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ही ज्यादा रिस्क है।
0: तो लिस्टर्स, डॉक्टर साहब ने हमें सबसे पहले ये बता दिया कि शराब और कैंसर का आपस में क्या संबंध है। शराब के साथ अगर आप सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू आप खा रहे हैं या दूसरा कोई ऐसा पदार्थ ले रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है, लाभकारी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, तो इससे अपने आप को बचाकर कैसे रखें, इसी संबंध में डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चर्चा को जरूर सुनिएगा। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कैंसर के हम टाइप्स के बारे में जानना चाहेंगे आपसे जो सीधे शराब से जुड़े पाए गए हैं, वो कौन कौन से टाइप्स हैं।
1: मैं पहले कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा
0: जी।
1: ए बंदे तू शराब के सरूर पे ना कर इतना गुरूर, शराब के सरूर पर ना कर इतना गुरूर, एक दिन ये ले लेगी तेरा जान और माल जरूर।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: तो जैसे आपने पूछा कि शराब जो है कौन कौन से अंगों का कैंसर कर सकती है
0: जी,
1: तो आप जैसे शराब को जब आप पीते हैं तो वो शुरुआत होती है मुंह से, शुरुआत होती है। तो समझने के लिए मैं समझाना चाहूंगा कि वो मुंह का कैंसर कर सकती है, जब वो पीछे जाती है तो गले में कैंसर कर सकती है, जो हमारे खाने की जो नली होती है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं उसका कैंसर कर सकती है
0: जी।
1: फिर जब शरीर में जाके वो आगे खून के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है
0: जी,
1: तो वो शरीर में जाती है, लीवर का कैंसर कर सकती है। इसके अलावा जो स्त्रियां हैं उनके अंदर वो हार्मोन का इम्बैलेंस प्रोड्यूस करके
0: जी,
1: जिसमें हार्मोन के जो लेवल्स हैं वो बदल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्तन का कैंसर हो सकता है। और जो शराब है लीवर का कैंसर भी कर सकती है, आंत का कैंसर भी कर सकती है।
0: तो दोस्तों, ये इस तरीके से सर ने डिटेल में ये बातें बताई हैं, तो इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से, किस कदर शराब हमें ले डूब सकती है। कैंसर की बीमारी जो एक घातक बीमारी है वो आपको लग सकती है और जिसकी वजह से आपकी मृत्यु तक हो सकती है। सोचिए, कल्पना करिए कि आपके पीछे आपका परिवार सफर करेगा, आपका परिवार परेशान होगा, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। परिवार के लिए इंसान भागदौड़ करता है, उनकी दुआओं की सलामती के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन अगर हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी दुर्दशा होगी। माफ कीजिएगा मैं इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सो लिसनर्स, अगर बात कैंसर की हो रही है तो हम आपको बता दें कि शारदा केयर हेल्थ सिटी में है स्टेट ऑफ द आर्ट ऑनकोलॉजी सेंटर, जहां पैट सिटी, ब्रेकी थेरेपी और टारगेटेड कैंसर केयर जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। यहाँ की ऑनकोलॉजी टीम हर रोगी के लिए एक व्यक्तिगत और समर्पित इलाज प्लान बनाती है। तो ये खास जानकारी भी मैंने आप तक पहुंचा दी, अगर कहीं आपको दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो यहाँ जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं अपने काम में, आप उनसे एक मुलाकात कर सकते हैं। वक्त है यहाँ पर छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, और मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय गुप्ता, न्यूक्लियर मेडिसिन शारदा केयर से।

0: भाई ये जो शराब है इंसान का लीवर खराब कर देती है भाई।
1: ये एक छोटा सा डायलॉग अमिताभ बच्चन साहब ने कहा है और वो उन पर फिल्माया गया है कि शराब इंसान का लीवर खराब कर देती है और इसके जो सिम्टम्स हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो सारी बातें एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर विजय गुप्ता न्यूक्लियर मेडिसिन शारदा केयर हेल्थ सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विस्तार से हमें बता रहे हैं कि शराब अगर आप पी रहे हैं कैंसर आपको हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ कभी कभार हम शराब पीते हैं और उसमें क्या रिस्क हो सकता है, इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है?
2: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये दुनिया की एक सबसे बड़ी संस्था है जो हेल्थ के विषय में रिसर्च करती रहती है और जानकारी लोगों को भी उपलब्ध कराती रहती है
1: जी।
2: उनकी स्टडी में ये पाया गया है कि शराब, एक बूंद शराब भी जहर है।
1: एक बूंद भी?
2: यस।
1: ओ माय गॉड।
2: अगर शराब ना लें तो भी जिंदगी चल सकती है ना?
1: चलती है।
2: तो क्यों हम शराब लें
1: जी?
2: अगर मैं शराब पी रहा हूं, अगर मैं 500 रुपए की शराब ले ली और धीरे धीरे धीरे शराब जो है मेरे शरीर पर असर डाल रही है और एक दिन मुझे बीमार कर देगी, तो ऐसा भी हो सकता है एक दिन कैंसर कर दे और मैं समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं
1: जी।
2: मैं उधर एक तरफ ये भी बात कह रहा हूँ कि मैं स्वस्थ क्यों नहीं रहता, तो पहले तो मैंने ऐसी चीज खरीद ली जिससे मेरा ही नुकसान हो रहा है, जिसको मैं बचा सकता था। अब अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं तो क्यों नहीं उसी पैसे से मैं अपने लिए ऐसी चीजें खरीद लूं जो मेरी जान को बचा सकती है या मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है। क्यों नहीं मैं ऐसे ड्राई फ्रूट्स ले लूं जिनसे जो है शरीर के ऊपर अच्छा असर होता है
1: जी।
2: तो क्या मैं शराब लेके कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहा, बल्कि कर ही रहा हूं कि मैं जो है अपने लिए जहर खरीद रहा हूं। तो वो जो पैसा है जिससे मैं अपने लिए जहर खरीद रहा हूं वो मेरे शरीर को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और मैं गलती कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को अपनी समझ को, सोच को बदलना चाहिए और मेरे को उससे ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जिससे मेरे शरीर को फायदा हो।
1: बहुत सही बात आपने अच्छी तरीके से हमारे लिसनर्स को समझा दी और यही बात हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते हैं कि अगर आपको कुछ खाना है तो नेचर ने, प्रकृति ने बहुत सारी चीजें हमें दे रखी हैं खाने के लिए। जैसे कि आपने खुद कहा कि ड्राई फ्रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फल फलारी आप खा सकते हैं और इस तरीके से जब खाएंगे तो एक्सरसाइज भी आप करें, अपने तन मन की शुद्धि रखें, तो निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम जब आपके हेल्थ पर देखने को मिलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप लापरवाह बेपरवाह हो जाएंगे तो कैंसर जैसी बीमारी से आपको कोई नहीं बचा सकता। चूंकि सर आपने यहां जिक्र किया कि 1% अल्कोहल भी आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है, चूंकि बात जब चल रही है तो मैं यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ब्रांडी का जिक्र होता था पुराने समय में, आज भी होता है कि बच्चे को सर्दी लग रही है तो ब्रांडी दे दीजिए, उसको थोड़ी राहत मिल जाएगी, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? तो वहां भी शायद बच्चे के लिए वो नुकसानदायक है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये पाया गया है, जैसे मैंने बताया था WHO ने अपनी रिसर्च में यही पाया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कह नहीं सकते कि कोई भी इसका जो है लेवल जो है वो सेफ है, एक बूंद भी जो है बच्चे को नुकसान कर जाएगी। आज हो सकता है उसको फायदा लग रहा है लेकिन जो इसका नुकसान है वो लंबे टाइम के बाद हमारे शरीर को जो है दिखने लगता है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि हम बीमार हो सकते हैं या अपनी जिंदगी खो सकते हैं
1: जी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जब आप बात कर रहे हैं, डिटेल में हमें बता रहे हैं, तो शराब में ऐसा वो कौन सा तत्व है जो नुकसान पहुंचाता है बॉडी को?
2: देखिए शराब में जो खास तत्व होता है उसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं और ये एसिटाल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है जो सीधे सीधे जो हमारे जो कोशिकाएं होती है जिनसे हमारा शरीर बनता है उनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे जरूरी हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं DNA, उस DNA को ये जो है उसके ऊपर हमला करती है, उसको बदल देती है, उसको ऐसा बना देती है कि वो शरीर में कैंसर वाला परिवर्तन आने से कैंसर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ये भी पाया गया है कि जो अल्कोहल होती है वो डायरेक्टली अपने, जैसे हम जब जैसे उसको पीते हैं तो वो हमारे मुंह में जाती है, ईसोफेगस में जाती है। तो जब हम शराब पीते हैं तो जो हमारे मुंह की जो अंदर की जो लाइनिंग है, ठीक है, इसको एपिथेलियल सेल लाइनिंग बोलते हैं, और जो ईसोफेगस की लाइनिंग है उसके जो सेल्स हैं, जिससे जैसे सेल्स से हमारा शरीर बना होता है, तो उन्हीं सेल्स को वो सीधा का सीधा मार देती है।
1: अच्छा,
2: ऐसा भी पाया गया। तो अब जैसे सीधा का सीधा उसे मार ही दिया
1: जी,
2: तो क्या होगा, वहां से जो है जो शराब है सीधा सीधा जो है उसका केमिकल जो है वो हार्मफुल केमिकल एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं कह रहा था कि सिगरेट भी नुकसान करती है, तो जो अब वो सेल्स जो है वो डैमेज्ड हो गए, अब जब व्यक्ति स्मोक करेगा या सिगरेट पिएगा तो धुआं अंदर जाएगा, तो वो वहीं जो डैमेज्ड जो सेल्स हैं उनके थ्रू सीधा उसके केमिकल अब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा जब शराब बनती है तो उसके अंदर कुछ और केमिकल बनते हैं जो जिनको पाया माना गया है कि वो कैंसर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि जब शराब शरीर में अवशोषित होके आंतों से अवशोषित होके लीवर में पहुंचती है तो लीवर में भी जो लीवर के सेल है उसको डैमेज कर देती है और लीवर में सिरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है।
1: जी,
2: सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिस जो शराब पीने से होती है और उसमें धीरे धीरे धीरे लीवर जो है अपना काम करना बंद कर देता है और लीवर एक बिल्कुल शरीर के लिए बहुत ही
1: महत्वपूर्ण अंग है।
2: महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो क्या होता है जब लीवर को डैमेज होने लगता है, लीवर का काम खत्म होने से शरीर में जो है सिरोसिस बन सकता है।
1: जी,
2: और वो जो सिरोसिस होता है उसके लक्षण जैसे आमतौर पे होते हैं कि पीलिया हो जाता है व्यक्ति को।
1: जी जी,
2: और जैसे उल्टी में उसको खून आ सकता है, ठीक है। और एक दिन जब लीवर पूरा फेल हो जाता है तो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब जो शराब है, देखिए आप कहां से कहां तक जा रही है, सिर्फ पी रहे हैं, उसके
1: पी रहे हैं।
2: शरीर में कहां कहां
1: कितना हार्म कर रही है।
2: इसके अलावा जो शराब जो होती है वो फीमेल हार्मोन जो स्त्रियां होती हैं उनके कुछ हार्मोन्स होते हैं उनको चेंज कर देती है, उससे उनको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अब कोई कोई बोलेगा कि अधिकतर जो है जो पुरुष हैं वही शराब पीते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लड़कियां भी फैशन के कारण शराब पीने लगी हैं। और आदमी शराब पीना कब शुरू करता है, जब उसके दोस्त बोलते हैं अरे पीले पीले कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होता, कभी कभी पीने से कुछ नहीं होता
1: जी,
2: ये तो शरीर को फायदा करती है। वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। और ये ही भ्रम में आके क्या होता है, जब आदमी थोड़ा सा पी लेता है तो उसका फिर मन करता है और ले लो, थोड़ी और ले लो
1: जी,
2: फिर वो उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो रोज लेने लगता है
1: जी,
2: फिर रोज जो अगर वो थोड़ी सी लेता है तो फिर उसकी मात्रा बढ़ जाती है और ज्यादा लेने लगता है, तो वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: राइट सर।
2: और इस तरह जो है वो अंत में कहीं ना कहीं फंस जाता है और उसके शरीर में नुकसान हो जाता है।
1: वो नरक के द्वार खोल रहा है कहीं ना कहीं फंसने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो अपनी मृत्यु को दावत दे रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी आता है कि रेड वाइन को तो कोई लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसमें यूं कहें कि आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये रेड वाइन होती क्या है।
2: मैंने जैसे बताया कि आजकल कुछ फैशन सा हो गया,
1: हाँ,
2: तो वो सोचते हैं कि चलो ये चीज जो है हम ये रेड वाइन की तरह ले लें, अगर सीधा अल्कोहल नहीं ले रहे तो। लेकिन रेड वाइन भी जो एक झांसा है। अब रेड वाइन के अंदर कुछ लोग बोलते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उससे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट तो एक लौंग के अंदर होता है। जब आप घर से निकले एक लौंग मुंह में डाल लो, शुरू में हो सकता है कुछ दिन आपको लगे कि थोड़ा मुंह का स्वाद अलग सा हो गया, लेकिन मैं आपको कहता हूँ जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है।
1: अच्छा, लौंग से?
2: यस,
1: एक रोज
2: एक लौंग लौंग जो है सिर्फ आप रोज ले लो।
1: अच्छा सर, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, कोई कहता है गर्मी के मौसम में नुकसान हो सकती है, जाड़े के मौसम में तो समझ में आता है, ऐसा कुछ होता है क्या?
2: ऐसा तो मैं अपनी तरफ से मतलब बिल्कुल श्योर होके नहीं कह सकता कि गर्मी में नुकसान करेगी या नहीं करेगी।
1: अच्छा, फायदे की बात करते चलिए,
2: लेकिन ऐसा मैं समझता हूँ कि चलो आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो शाम के समय ले लो,
1: ठीक है। और फायदा क्या करेगी सर लौंग?
2: लौंग के अंदर इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर काफी जो रोग होते हैं
1: जी सर,
2: वो जो रोग होते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर प्रॉब्लम के कारण होते हैं
1: जी।
2: और जो एंटीऑक्सीडेंट टाइप की चीज जो होती है ये फलों में भी बहुत होती है, जैसे खासतौर पर अंगूर में होती है, ठीक है, जो काले अंगूर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन हर समय हम काले अंगूर नहीं मिलते, ठीक है, लौंग जो है बड़े आराम से उपलब्ध होती है और हमने सिर्फ एक लौंग ही लेनी है।
1: क्या बात है, बहुत
2: शुरुआत तो की।
1: बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब कहने का आशय मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है, और आपके आशय को, आपके भावार्थ को, अर्थ को मैं समझ गया हूँ। और इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो यही बात निकल कर सामने आती है कि नेचर ने, अर्थात दोस्तों प्रकृति ने बहुत कुछ हमें दे रखा है खाने के लिए, पीने के लिए, और जो आप तलाश रहे हैं शराब में, मैं समझता हूँ कि शराब आपको बर्बाद कर देगी, आपको कैंसर की ओर लेकर चली जाएगी, नर्क के द्वार खोल देगी, फाइनली आपकी मृत्यु हो जाएगी। नेचर ने जो चीजें दे रखी हैं, अगर आप कुछ कुछ खाते हैं तो वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी जो आप शराब में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जान है तो जान है, वक्त है आप एक छोटे से म्यूजिक और ब्रेक का। लेकिन उससे पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि शराब से सेहत पर असर हो रहा है, आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, तो शारदा केयर हेल्थ सिटी पर आप एक मुलाकात करिए, यहां पर मिलिए और अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटीज जैसे कि कैंसर स्क्रीनिंग पैकेजेस, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी और 24/7 ऑन्कोलॉजी ओपीडी सपोर्ट। यही नहीं, हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट पूरे उत्तर भारत में जाना जाता है उन्नत तकनीकों के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो एक बार जरूर यहां दौरा कर सकते हैं, मिल सकते हैं। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, और एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय गुप्ता जी।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरी यानी गगन के साथ डॉक्टर विजय गुप्ता जी मेडिसिन केयर शारदा हेल्थ केयर फैसिलिटी डिपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले आपने जो हमें डिटेल में बातें बताई अच्छी तरीके से हर एक सवाल का आप जवाब दे रहे हैं कि शराब हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक है। कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं कि शराब ये वाली शराब वाली शराब हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन नहीं। आपने ये भी कहा कि महिलाओं में भी हार्मोन चेंज हो जाते हैं, उसके दुष्परिणाम आज नहीं लेकिन कल परसों वो नजर आते हैं। तो खैर, कहने का आशय सिर्फ ये कि शराब से दूरी बनाकर रखिए। जिंदगी ने बहुत कुछ दे रखा है प्रकृति ने, आप फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स लीजिए तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्थ बनती है। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आपके पास शराब से जुड़े हुए मरीज आते हैं, बीमारियों से जुड़े हुए मरीज आते हैं, जब पैट स्कैन आप करते हैं तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं या वो क्या आप फर्स्ट मीटिंग में डायग्नोस कर पाते हैं कि भैया आपको ये दिक्कत परेशानी है या ये दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है?
1: देखिए, जो पैट स्कैन होता है जिसको पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहते हैं, ये वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कैंसर का बहुत ही अच्छा निदान हो सकता है जो किसी और तकनीक से हो ही नहीं सकता। अब जो पेट स्कैन जब हम करते हैं तो हम पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक का जो है पूरे शरीर का स्कैन करते हैं, उसका हर अंग हम देखते हैं उसमें, और ये जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास मरीज आया है उसके शरीर में जो बीमारी है वो कहाँ कहाँ तक फैल गई है। तो ये जो पेट स्कैन होता है, जो ये मरीज आते हैं मेरे पास कई कई स्टेजेस में आते हैं, जैसे जब वो पेशेंट जिसको अभी अभी कैंसर डायग्नोज हुआ है, ये जानने के लिए कि उसका कैंसर क्या मतलब एक ही जगह पर है या शरीर में फैल तो नहीं गया। अब इसका फायदा क्या होता है कि मान लो वो फैल गया है तो उसका ट्रीटमेंट बदल जाता है और उसको और स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। फिर इसके अलावा जब मरीज को ट्रीटमेंट दी जाती है तो उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या कैंसर का उस ट्रीटमेंट का असर हुआ या नहीं हुआ, कैंसर पर कितना असर हुआ, अच्छा असर हुआ या नहीं हुआ, या दवा बदलने की जरूरत तो नहीं है
0: जी।
1: फिर जब मरीज ठीक हो जाता है तब एक बार चेक कर सकते हैं कि पूरा शरीर का जो बीमारी है वो ठीक हो गई या नहीं हो गई। अब ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कई बार जल्दी ठीक नहीं होती, दोबारा उभर के आ सकती है। तब जैसे एक दो साल बीत गए, फिर हमें शक हो गया कि पेशेंट को दोबारा से कैंसर हो सकता है, तब हम उसको जो है फिर से स्कैन करते हैं। तो ये जो पेट स्कैन है, ये कैंसर के अंदर एक इसका विशेष जो है स्थान है, और ये शरीर के अंदर कैंसर के अंदर जो उसका निदान है उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है
0: जी।
1: ठीक है, अब हमारे पास जो मशीन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम सेंटर है जहां पर ये फैसिलिटी होगी, और ये शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर लगा हुआ पेट स्कैन, तो यहाँ पर जो है काफी बहुत सारे जो है मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह भी पढ़ते हैं जो हजारों में हैं, तो उनको भी इसका जो है एक्सपोजर हो रहा है, और वो जो है यहाँ से जो टेक्निक के बारे में जान के जो और मरीजों को जब वो यहाँ पर भी रहेंगे या दूर दूर तक भी चले जाएंगे तो पूरे देश में जहाँ जाएंगे या फॉरेन कंट्रीज में भी जाएंगे तो इस टेक्निक के आधार पर, उसकी नॉलेज के आधार पर वो काफी अच्छा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर पाएंगे, यानी निदान और उसका जो है उपचार बहुत अच्छा कर पाएंगे।
0: ठीक है,
1: अब जो मेरे पास जो मरीज आते हैं तो मरीजों का जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उनका एक ये सवाल होता है कि सर ये कैंसर होता कैसे है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 50% तक कैंसर जो मैं हिस्ट्री लेता हूँ, जब पेशेंट से समझने की कोशिश करता हूँ कि उसने क्या स्मोकिंग की थी, उसने क्या अल्कोहल का यूज किया था, तो मैंने यही जाना कि 50% जो कैंसर है वो इन्हीं से संबंध है उनका। तो हमें सबसे पहले यही सोचना है कि हम शराब को रोक दें और हम सिगरेट या तंबाकू को रोकते हैं। उसके बाद जो अगली बात आती है कि जब हम शरीर में देखते हैं तो मैंने ये पाया है कि जिन लोगों को शुरू में पता लग जाता है कि उनको कैंसर हो गया है, जब हम उनका स्कैन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो कैंसर है वो फैला नहीं होता, वो आसपास ही होता है। ठीक है, ऑर्गन के अंदर ही होता है, तो उनका इलाज बहुत आसान हो जाता है, और वो अगर उनका इलाज हो गया तो हो सकता है पूरी नॉर्मल जिंदगी जी जाएं। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो अपने इलाज में देरी कर देते हैं, वो कहते हैं मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लूंगा, मैं सीधा ट्रीटमेंट ले लूंगा, मेरे पास कोई और साधु है उसने मेरे को भस्म दे दिया है
0: जी,
1: उससे मैं इलाज कर लूंगा। लेकिन मैंने ये पाया उन सब चीजों के लेते हुए भी उनकी जो बीमारी है
0: बढ़ जाती है,
1: 3 महीने पहले जो थी वो आज जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है
0: जी,
1: और वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि वो जो मरीज है बेचारा, उसको वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए कैंसर के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम जल्द से जल्द, जैसे ही हमें शक हो, हम एक बार डॉक्टर की ओपिनियन लें। ठीक है, और अगर हमें वाकई में कैंसर हो गया तो उसका तुरंत इलाज करा लें। हम ये भ्रम में ना पड़े कि आयुर्वेद की कोई दवाई या कोई भस्म या साधु का तावीज हमें बचा देगा।
0: जी जी।
1: नहीं, ऐसा रिस्क मत लेना। आप वो साथ साथ करते रहो, लेकिन जो हमारा इलाज है वो भी जरूर कराएं।
0: क्या बात है। तो डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है बहुत एक अच्छे आधार के साथ बात रख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो पाया वही बातें हमारे सामने रखी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इलाज में देरी आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। इधर उधर आप न भटकें, डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। कहते ना सबसे बड़ा आधार यही है कि आप शराब ही क्यों पी रहे हैं, ऐसे चीजों का सेवन क्यों कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है, आपको मौत की ओर लेकर जा सकती है। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगा, अक्सर हमने देखा है कि एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और एक व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता और वो उसके साथ खड़ा हो रहा है और मैं समझता हूं कि वो थोड़ी दूरी भी मेंटेन कर रहा है, तो अगर वो दूरी मेंटेन कर रहा है तो सही है, खड़ा होना कितना सही है क्या गलत है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग, मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूं लेकिन हाँ यार वो सिगरेट पीता है, मैं उसके साथ कंपनी देने चला जाता हूं।
1: ये मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है
0: जी।
1: अभी जैसे चलो दोस्त तो कह सकता है कि मैं थोड़ी दूर चला जाता हूं या मैं दूर रह लेता हूं, आप उन बच्चों के बारे में सोचो ना जिनके पिताजी ये सिगरेट पीते हैं, अब वो सिगरेट पीते हैं घर में ही धुआं फैला रहे हैं और वो छोटा बच्चा जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, शरीर उसका ग्रो कर रहा है और उसके अंदर वो गंदा धुआं जा रहा है जिसको सेकंड हैंड स्मोक बोला जाता है। अब वो जो गंदा धुआं उसके अंदर जा रहा है
0: जी सर,
1: तो वो तो पक्का उसको प्रभावित करने वाला है
0: जी,
1: क्योंकि जो स्मोकिंग कर रहा है उसके अंदर तो धुआं जा ही रहा है, उसी से तो उसकी बीमारी हो रही है
0: जी।
1: तो जब वो धुआं बाहर छोड़ रहा है तो जो दूसरा व्यक्ति लेगा तो उसको तो बीमारी होनी है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो सेकंड हैंड स्मोक होती है ये भी एक डेंजरस चीज है। अब लोग कहते हैं कि देखो जी मैंने तो कभी सिगरेट भी नहीं पी, मेरे को बीमारी हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यही है, सबसे पहले ये समझा जाए क्या उनके घर में उनके पिताजी या कोई और जो है वो सिगरेट पीते थे। कुछ लोग कहते हैं कि सिगरेट तो थोड़ी बड़ी होती है, उसको बीड़ी पी लेते हैं, बीड़ी से कम नुकसान होगा, लेकिन वो भी एक भ्रम है, बीड़ी भी उतनी नुकसानदेह है
0: जी जितनी सिगरेट है
1: जितनी है।
0: और सर शराब, और फिर मैं आपकी बात को समझ गया, आई थिंक आप मना कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर दूरी बनाकर रखें तो वो आपकी सेहत के लिए सही रहेगा।
1: दूरी अगर बनाना, देखो दूरी बनाने से अपनी तसल्ली हो सकती है, लेकिन अगर धुआं अंदर जाएगा ही जाएगा तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होएगा ही, थोड़ा हो। अब वो जैसे आप कहते हो कि हमने 2-2 रुपए करके 100 रुपए बना लिए, तो वो थोड़ा नुकसान करके एक बड़ा नुकसान बन जाएगा।
0: ओह गॉड, ओके। लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है कि मतलब कुछ अपने आप को, मतलब कहते हैं स्टाइलिश दिखाने के लिए, फैशन के दौर में अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए सोचते हैं कि सिगरेट भी पियेंगे और शराब भी पियेंगे, इस तरीके के दोनों का एक समावेश लेकर वो अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में?
1: देखिए जहां तक मेरी समझ जाती है, मैं तो ये समझता हूं कि अगर आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है तो आप इस तरह की चीजों का सहारा लेंगे कि आप सिगरेट शराब दिखा के आप दोनों लोगों को बताना चाहेंगे कि आई एम ए वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। कहीं ऐसा तो नहीं है, आप अंदर झांक के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आप अपने मन को स्ट्रांग बनाइए, आप उसी पैसे से कुछ और करिए, कुछ नई चीज सीख लीजिए, आप गिटार सीख लीजिए। आपने मान लो शराब ली, आपने 10-15 हज़ार रुपए खर्च दिए, 10-15 हज़ार रुपए में आप एक गिटार भी खरीद लें और थोड़ा थोड़ा उसको सीख लें। और जब मैं तो ये समझता हूँ कि कितने बच्चे मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि सर हमें मौका मिलना चाहिए, हम स्टेज पे गिटार बजाएंगे। अच्छा क्यों बजाना है? कहने देखो हम दुनिया को दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो जब कुछ करने को दिखाने ही है तो ऐसी चीजें करके दिखाओ जिससे आपका फायदा भी हो, नुकसान भी ना हो और दूसरे भी उसका आनंद ले सके।
0: क्या बात
1: है। जब आपने शराब पी ली तो आपने ड्राइविंग की और एक्सीडेंट मार दिया, जब आपने सिगरेट पी सेकंड हैंड स्मोक दी उससे भी नुकसान कर दिया, तो जब आपने गिटार बजाया तो आप भी खुश हुए, दूसरे भी खुश हुए। तो कौन सी चीज अच्छी है आप चूज कर लीजिए।
0: क्या बात है, बिल्कुल अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ, नेचर के बीच में गुजारते चले जाइए, अपनी फैमिली से मोहब्बत करिए। जब फैमिली का ख्याल आता है तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। शारदा केयर हेल्थ सिटी का कैंसर सपोर्ट यूनिट मरीजों को इलाज ही नहीं बल्कि काउंसलिंग, डाइट प्लानिंग और फिजिकल रिकवरी तक की सेवाएं दे रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब यहां से संबंध रखते हैं, हम भी यहां का एक पार्ट हैं। हम मानते हैं कि कैंसर का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं, सहारा, जानकारी और इंसानी भावनाओं से भी होता है। तो एक बार आप अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई दिक्कत परेशानी है तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ विजिट करना चाहिए। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ, और एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय गुप्ता मेडिसिन केयर से शारदा अस्पताल से।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विजय गुप्ता, न्यूक्लियर मेडिसिन शारदा हेल्थ केयर शारदा अस्पताल से। तो ब्रेक के बाद एक बार सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कोई सेफ लेवल होता है शराब का जिससे कैंसर का खतरा ना हो?
1: नो, कोई भी सेफ लेवल नहीं होता। एक बूंद भी शराब जो है आपके लिए जहर है और इसको WHO ने भी माना है। उसके अपने अनुसंधान से पता लग गया है कि शराब जो है वो जहर ही है। इसको जस्टिफिकेशन ना दें कि शराब से फायदा होता है, बिल्कुल ना दें।
0: अगर कोई सिर्फ वीकेंड्स पर पीता है और कहता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं है तो उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? मतलब मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन सवाल ऐसे ऐसे आते हैं दिमाग में लोगों के।
1: नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ, इसको आप जो है जस्टिफाई ना करें।
0: कभी कभी पी रहा हूँ ओकेजनल,
1: जहर तो जहर है, कम लो या ज्यादा ले लो, जहर तो जहर है।
0: जो एक रिसर्च के आधार पर हमारे सामने सवाल आ रहे हैं वही मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। अगर कोई शराब छोड़ दे तो क्या कैंसर का खतरा कम हो सकता है?
1: बिल्कुल निश्चित तौर पे। अगर जो शराब है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है तो ये तो निश्चित है कि उसको बंद कर देंगे तो आपका खतरा कमतर हो जाएगा। और उसके अलावा जब आपने शराब छोड़ दी तो आप कोशिश करें कि हम कुछ ऐसे भी उपाय करें जिससे जो नुकसान हुआ वो कम होता जाए। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसको अपनाना चाहिए कि हमें जो है ऐसे फल खाएं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हरी पत्ती पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, या इसके अलावा ऐसे फल खाएं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें जो है अपने शरीर को और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारा नुकसान हो गया
0: जी,
1: उसको हम कम कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई। और लिसनर्स हम यही कहेंगे कि प्लीज प्लीज ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि आप दुनिया जहान को देखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, जिंदगी को जीना चाहते हैं और लोग परिवर्तन ला रहे हैं अपनी सेहत में। कहते हैं कि जान है तो जहान है और आपके सपने साकार तभी होंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। ईश्वर से, खुदा से दुआओं में अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो यही मांगेगा कि हे मालिक, मेरी जो काया है वो निरोगी काया रहे, क्योंकि मैं ऐसा मांगता हूं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि शारदा केयर हेल्थ सिटी का न्यूक्लियर इमेजिंग यूनिट देश के गिने चुने संस्थानों में से एक है जो एडवांस्ड पैट सिटी, स्पैक्ट सिटी और रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी की सुविधा देता है, जिससे कैंसर की अर्ली डिटेक्शन और स्टेजिंग मुमकिन हो पाती है। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय गुप्ता, न्यूक्लियर मेडिसिन शारदा केयर हेल्थ सिटी से।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज हैं हमारे बीच में डॉक्टर विजय गुप्ता, न्यूक्लियर मेडिसिन शारदा केयर हेल्थ सिटी से। सर, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर मेडिसिन कैंसर का इलाज में किस तरीके से और कैसे मदद करता है?
1: देखिए, न्यूक्लियर मेडिसिन ये जो जैसे शब्द है इससे आप समझ सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिकीय चिकित्सा।
0: ओके,
1: अब नाभिकीय चिकित्सा में क्या होता है, जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो रेडियो एक्टिव मेडिसिन होती है। आपने सुना होगा कि नागासाकी, हिरोशिमा, वहां पे जो एटॉमिक बम छोड़े गए जिससे कितना नुकसान हुआ इस दुनिया का।
0: जी जी,
1: तो वही टेक्नोलॉजी उसको हम एक बहुत छोटे से रूप में यूज करें तो उसको वो जो है जिंदगी को बचाने वाली बन जाती है। उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैंसर का निदान यानी डायग्नोसिस और उसका इलाज भी करते हैं। अब जो भी कोई बीमारी होती है उसकी जो शुरुआत होती है वो जो होती है हमारे शरीर के जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके लेवल पर होती है।
0: जी,
1: और न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर इतनी ताकत है कि वो जो है शरीर की कोशिकाओं के लेवल पे बीमारी को समझ लेती है और उसको पकड़ने में आसानी होती है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बोन के अंदर जैसे कैंसर फैल गया, उसके शरीर में मान लो स्तन का कैंसर था या लंग का कैंसर था, वो हड्डियों में चला गया। अब अगर मैं उसका एक्सरे करूं तो एक्सरे जब बताएगा उसके 6 महीने पहले, अगर एक्सरे ने बता दिया कि यहाँ कैंसर फैल गया, तो जो न्यूक्लियर मेडिसिन की जो तकनीक है उसके द्वारा हम 6 महीने पहले बता सकते हैं कि इसको कैंसर हड्डियों में फैल गया, जो कि एक्सरे आपको 6 महीने बाद बताएगा। तो अब आप ये बताओ 6 महीने कितनी कीमती है, उस 6 महीने में उसका इलाज भी हो जाएगा।
0: जी जी,
1: तो हमारी जो तकनीक है न्यूक्लियर मेडिसिन की, कैंसर के इलाज की तकनीक, वो बहुत ही अहम और उत्तम तकनीक है जिसके द्वारा शरीर के अंदर हम बीमारी को बहुत जल्द पकड़ लेते हैं।
0: जी,
1: इसके अलावा ये जो जब हम इसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो वो जो ट्रीटमेंट होती है जहां पे कैंसर होता है वहीं पर जाके उसको स्ट्राइक करती है। कई बार आपने सुना होगा किसी को कीमोथेरेपी दे दी गई, किसी को जो है रेडियोथेरेपी दी गई, उसका साइड इफेक्ट हो गया, कीमोथेरेपी से बाल झड़ गए, ऐसा हो गया वैसा। तो लेकिन न्यूक्लियर मेडिसिन में कुछ रोगों के लिए, मैं हर रोग के लिए तो नहीं बात कर रहा,
0: जी जी,
1: कुछ रोगों में न्यूक्लियर मेडिसिन में बड़ी सटीक टेक्निक है जो साइड इफेक्ट को कम कर देती है। उसमें साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं और मरीज का इलाज हो जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, अगर कोई शराब छोड़ना चाहता है लेकिन मुश्किल हो रही है और तो उस वक्त आप क्या सलाह देंगे, किस तरीके से वो शराब को छोड़ सकता है?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी आदत को अपनाया ही ना जाए। आपके अगर दोस्त बोलते हैं नहीं यार शराब पी लेते हैं, थोड़ी सी पी ले, कुछ नहीं होता, आप उसके बहकावे में ना आए। सबसे पहला तो यही है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने।
0: क्या बात है,
1: हम उस स्टेज पे पहुंचे ही क्योंकि जो है हम एक अपाहिज हो गए कि हमें किसी की मदद चाहिए कि हम ये इससे बच जाए। तो हमें ही पहले स्ट्रांग रहना होगा, चाहे उसका तरीका ये भी होता है कि जो ओकेजन है जहाँ पे ये शराब चल रही है या तो आप वहां जाए ना, ठीक है, और जाए तो उसको किसी तरह से अवॉइड कर दें।
0: जी,
1: इसके अलावा अगर मान लो आप इस चीज में फंस ही गए हैं और आप शराब पीने शुरू कर चुके हैं और आप अब छोड़ना चाहते हैं, तो अपने मन को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को उन चीजों

0: क्योंकि इन बातों को ध्यान में रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। बार बार अपने शब्दों को दोहराते हुए कह रहा हूं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और दुनिया जहान को देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लंबी उम्र की दुआएं दी जाती हैं, शुभकामनाएं दी जाती हैं, और अपने पैरों पर फिर मैं शब्दों को बारम्बार दोहरा रहा हूं कि कुल्हाड़ी ना मारें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और इस श्लोक को सार्थक करें, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति। अर्थात अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये भारत की सोच है, भारत के एक सनातन धर्म की ये सोच है, और जब इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सबका भला होगा, सबका भला में ही हमारा भला है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं अंत में इस तरह से बोलना चाहूंगा कि शराब एक जहर है, उसको बिल्कुल ना अपनाएं, एक बूंद भी जहर है। आपके पास अगर पैसा है तो उससे कुछ ऐसी चीजें खरीदिए जिससे आपका शरीर का विकास हो, आपके शरीर का फायदा हो। एक शराब जो व्यक्ति लेता है उससे सिर्फ उसी को नुकसान नहीं होता, उसके पूरे परिवार को होता है। जब शराब पी के आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप एक्सीडेंट करते हैं, तो अपने का भी नुकसान करते हैं, दूसरे लोगों का भी नुकसान करते हैं। अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके परिवार वाले भी उससे प्रभावित होते हैं। कितने लोग होते हैं शराब पी के वो जो है गलत हरकतें करते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शराब में किसी का भी फायदा नहीं है।
0: क्या बात है,
1: ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो जो आप जो है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि शराब को अपना लें या सिगरेट को अपना लें, तो आप उससे बचिए। आप कुछ ऐसी चीजें सोचिए जिससे लोगों को अच्छा लगे। आप कुछ मोनो एक्टिंग, कुछ जो है गिटार बजाना या गाने गाना, ऐसी चीजें सीखिए, उसके ऊपर अपना पैसा खर्चिए बजाय शराब के, ताकि जो लोगों को उससे अच्छा भी लगे, आपको भी अच्छा लगे।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, बस समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं और यही कहेंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो जरूर जांच कराएं, सलाह या इलाज की आवश्यकता है तो आप संपर्क करें, यानी कि कॉन्टैक्ट करें शारदा केयर हेल्थ सिटी पर। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 4300 4300 74 0। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 4300 7, उसके बाद 4 टाइम 0। मैं हूं गगन और मेरे साथ विजय गुप्ता, डॉक्टर विजय गुप्ता, दोनों ही अनुमति ले रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और तब तक स्वस्थ रहें, सजग रहें। फिर होगी अगले एपिसोड में आप सबसे मुलाकात। टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

अपार संभावना है और देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। तालाबों, पोखरों और नहरों में लगातार पानी की कमी होती जा रही है, जिससे मछलियां पर्याप्त मात्रा में बाजार में नहीं मिलती। ऐसे में मछली पालन व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और भारत में मछली पालन व्यवसाय विकास की ओर बढ़ रहा है। आज भारत के बहुत से किसान भाई मछली पालन करके अच्छी आय कमा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बहुत बढ़िया स्रोत बन के सामने आया है। बड़ी संख्या में हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, किसान भाई हैं, इस व्यवसाय की तरफ रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मछली पालन की शुरुआत करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। अब बात आती है कि मछली पालन व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें, तो आप अपने जिले के मछली पालन विभाग में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस व्यवसाय से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठा करके मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मछली पालन व्यवसाय की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार है सुनील चौहान और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। किसान मित्रों, आजकल हमारे बहुत से किसान भाई अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके अतिरिक्त आमदनी कमा रहे हैं और एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना खुद का स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही बी कीपिंग स्वरोजगार से जुड़े हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई या युवा साथी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सोचते होंगे कि आखिर हम शुरू करें तो खर्चा कितना आएगा शुरुआत में। यदि बात की जाए मधुमक्खी पालन पर आने वाले खर्चे की, तो यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इस व्यवसाय से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप जरूर अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाइएगा और वहां बात कीजिएगा कि हम मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो आपको सारी की सारी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से वहां बता दी जाएगी और इसके साथ ही आपको प्रशिक्षण के बारे में भी समझा दिया जाएगा। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना मधुमक्खी पालन व्यवसाय के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप रविंद्र खालोर और उनके साथियों से ये रागनी सुन रहे थे। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेत से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे कि उत्पादन बढ़े, साथ ही जो खेती में लागत आती है उसमें कमी आए। किसान मित्रों, आज के समय में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन की मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आवश्यक है। उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना आवश्यक है, तभी हमें पता चलता है कि किन पोषक तत्वों की कमी है हमारी मिट्टी में और किन पोषक तत्वों की अधिकता है। मिट्टी का नमूना लेने के बाद उसकी जांच के लिए आप स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक या फिर नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के दफ्तर में जा सकते हैं और वहां जाकर के अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच की जाए। जिस तरह स्वस्थ शरीर के लिए सही खान पान का होना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। खेती से बेहतर पैदावार और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना जरूरी है और साथ ही मिट्टी की जांच से पता चलता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की उपलब्धता है और किस पोषक तत्व की अधिकता या कमी है। किसी भी फसल से उन्नत पैदावार के लिए ये जरूरी है कि उस फसल को किस प्रकार की भूमि में उगाया जा रहा है और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो मिट्टी की जांच करने के बाद ही पता चलते हैं। तो आप कोई भी फसल करें अपने खेत में, लेकिन अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करा लें ताकि आपको फसल का भरपूर उत्पादन मिल सके। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

लोकेंद्र सिंह द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह

7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पूरे कर चुके थे। मेहरबानों, विष्णु भगवान का सिंहासन हाल गया, मेरे किसी भक्त पर भीड़ पड़ गई। विश्वामित्र ने सारा हाल सुना दिया। महाराज 99 यज्ञ पूरे कर चुके महाराज हरिश्चंद, और 100 यज्ञ की तैयारी है, फिर क्या था। दोस्तों, विश्वामित्र यज्ञ का खंडन करने के लिए आ पहुंचे और हरिश्चंद के दरवाजे पर आ गए। यह हो सत्यवादी महाराज की। आइए महानुभाव, आइए दानी सत्यवादी, हम तुम्हारे दरवाजे पर कुछ इच्छाएं लेकर के आए हैं।
1: क्या इच्छा है महाराज, बताइए। जिसकी लायक हूँ।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: एंड ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो तारा?
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता असमान व्यवहार असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधू और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहाँ से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहाँ से ऑन एयर कर रहे हैं जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: विश्व में भारत को परंपराओं और संस्कृतियों का देश कहा जाता है और दुनिया में अगर कभी भी महिलाओं को पूजने की सम्मान देने की संस्कृति है तो उनमें सबसे पहला नाम भारत का आता है क्योंकि हमारे देश की सभ्यता में यहाँ की संस्कृति में महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। परंतु फिर भी

0: इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिलाओं के कानून के विशेषज्ञ एडवोकेट राकेश पांडे जी। इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगी सहयोगी आरजे सोनिक। तो चलिए सुनते हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार पर ये खास चर्चा।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी और महिलाओं के कानूनी अधिकार पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विधि विशेषज्ञ एडवोकेट राकेश पांडे जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो महिलाओं के कानूनी अधिकार होते हैं वो क्या क्या कानूनी अधिकार मिले हुए हैं सरकार की तरफ से महिलाओं को?
2: महिलाओं को जहाँ तक अधिकार की बात है, महिलाओं को की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक घरेलू हिंसा का व्यवस्था दी गई है सरकार की तरफ से। ये हमारा कानून जो है 2005 में बना, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को सुरक्षित करने के लिए। दूसरा चीज ये है कि महिलाओं को ये भी अधिकार दिया गया है कि वह अगर परिवार की शादीशुदा महिला है और परिवार के बीच में वो प्रताड़ित हो रही है तो IPC के तहत भी उसको व्यवस्था दी गई है कि वो 498 का मुकदमा प्रताड़ित करने वाले के विरुद्ध दाखिल कर सकती है। प्लस अगर वह उसका जो स्त्री धन है उसको मिला हुआ है, अगर उसको भी अगर उसके परिवार के लोग उसको हड़पते हैं तो उसके अंदर 406 के तहत वो चाहेगी तो वह दायर IPC के तहत कर सकती है। तीसरा चीज, मान लीजिए कि कोई महिला शादीशुदा है और वह उसका पति जो है उसको भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर रहा है तो सेक्शन 125 CRPC के तहत वह अपनी मेंटेनेंस के लिए दावा पारिवारिक न्यायालय में दाखिल कर सकती है और वहां से उसे रिलीफ मिलेगी। अगर उसके बच्चे हैं तो उनको भी सरकार कानून के तहत व्यवस्था की है कि उसको भी मेंटेनेंस दिया जाए और वो पाते हैं।
1: सर, आजकल घरेलू हिंसा जो है वो काफी बढ़ती जा रही है, तो घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या कुछ कानूनी अधिकार है महिलाओं के पास?
2: भाई, घरेलू हिंसा की जहाँ तक बात आप कहिएगा तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत बहुत इसका विस्तृत रूप लिया गया है और इसके अंतर्गत मान लीजिए कि किसी महिला को अगर घर में वो है, अपने परिवार के बीच में है और उसको अगर उस घर से निकाल दिया जाता है और उसको खाने पीने की दिक्कत होती है, कोई भी समस्या उसे अगर होती है तो उसके लिए जो है 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दाखिल होता है और उसमें न्यायालय जो है उसके भरण पोषण के साथ साथ उसको आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराती है और अगर उसका कंप्लायंस नहीं होता है तो उसके आगे जो है 31 के तहत कंप्लेंट फाइल होती है और कोर्ट नॉन क्रिमिनल ऑफेंस मानते हुए उनको तलब करती है और तलब करके उनको दंडित करती है और जो कोर्ट का आदेश रहता है उसका कंप्लायंस कराती है। और मान लीजिए उसको अगर आदेश हुआ है कि उसको घर में रहने के लिए उसका जो जहाँ पे लड़की विदा होकर के जाकर के जिस कमरे में रहती है ये माना जाता है वो उसका अपना घर है तो उस घर में रहने के लिए जो है वह अधिकार उसका हमेशा सुरक्षित रहता है कि मतलब कि कानून के दृष्टिकोण से 12 घरेलू हिंसा के तहत वह जाएगी अपने ससुराल में, उसी कमरे में उसको दिया जाएगा खाने पीने रहने की व्यवस्था, मेडिकल तक की भी सुविधा मुहैया कराने की भी व्यवस्था 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं।
0: हिंसा को नोके हमारे आज के विषय महिलाओं के कानूनी अधिकार पर हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहने वाली है, पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद आते हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पेश है हिंसा के खिलाफ ये प्यारा सा गीत।

0: हिंसा को लोके हमारे इस कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। हमारा आज का विषय है महिलाओं के कानूनी अधिकार, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधि विशेषज्ञ एडवोकेट राकेश पांडे जी। तो चलिए सुनते हैं राकेश पांडे जी के साथ ये चर्चा।
1: सर, अभी आप बता रहे थे कि 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ है।
2: जी जी।
1: तो ये 2005 डीवी एक्ट है क्या?
2: ये इसको एक्चुअली में है क्या, ये महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ये एक्ट बना, और इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करके घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005-06 में इसका लागू कर दिया गया। और इसके अंतर्गत जो है कई चीजें हैं जो घरेलू हिंसा को परिभाषित करती है सेक्शन 3 में, और उनके अधिकारों का संरक्षण सेक्शन 12 से लेकर के आपका 29 तक व्यवस्था दी गई है कि कब उनका किस किस समय कौन कौन धाराओं में बाध्य करेंगी, उनका कंप्लायंस कब होगा और उनको अपील कहाँ होगी, ये सब चीजें इन सेक्शन में डिफाइन की गई हैं।
1: सर, अगर कोई महिला अपने पति से तलाक लेती है तो उस वक्त उस महिला के पास क्या कुछ अधिकार रहते हैं? वो अपने पति से संपत्ति या फिर क्या कुछ ले सकती है और कैसे?
2: अब रही बात, जैसे कि डाइवोर्स के कई तरीके हैं। एक तो म्यूचुअल कंसर्ट से 13B के अंतर्गत डाइवोर्स लोग लेते हैं कि हमारे पति और पत्नी के बीच में अगर सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहे हैं तो एक पुस्त भरण पोषण लेकर के दोनों 13B का वाद दाखिल करके और एक दूसरे से अलग होने का निर्णय लेते हैं। अगर पति डाइवोर्स फाइल करता है क्रूएल्टी के आधार पे पत्नी के विरुद्ध, तो पत्नी का अधिकार वहाँ संरक्षित रहता है। अगर वो वहाँ पे वो अपने अधिकार के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए, उनके जीवन यापन के लिए जो भी चीजें हैं कोर्ट उसको दृष्टिगत रखते हुए एक आदेश पारित करती है और उसका कंप्लायंस आगे होता रहता है।
1: सर, अगर किसी शादीशुदा महिला को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए तो उनके पास क्या कुछ अधिकार होते हैं?
2: हमारे पास IPC की धारा 498 एक सेक्शन है प्रताड़ना के लिए, प्रताड़ना 498। और जहाँ तक दहेज की बात आती है तो वो 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अलग से एक्ट है जिसके अंदर 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है गवर्नमेंट ने, जिसके तहत उसको वाद दाखिल होता है और FIR दर्ज होती है थाने पे, हो चाहे तो डायरेक्ट जाकर के 400 का नॉन कंजलेबल ऑफेंस के अंतर्गत माना जाता है 498-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो उसके तहत डायरेक्ट जाकर के थाने पे FIR करा सकती है और प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है और जेल भी भेज सकता है।
1: और सर, ये जो भी आप बोल रहे हैं कार्रवाई की जा सकती है, तो इस कार्रवाई के लिए महिला को क्या करना होगा, कैसे वो वहाँ तक आएगी?
2: महिलाओं के लिए, महिला चाहे तो सरकारी सुविधा के अनुसार 112 नंबर पे कॉल करके अपनी बातों को वो रिकॉर्ड करा करके और अपना प्रमाण पत्र जा करके नियरेस्ट थाने पे दे सकती है। महिला थाना बना हुआ है, महिला थाने पे जा करके अपनी बातों को वो दर्ज करा सकती है, अपने प्रार्थना पत्र दे सकती है। शिकायत तो उसको स्वयं करनी पड़ेगी, जो उसके साथ घटनाएं घट रही हैं, जो चीज उसके साथ दिक्कत आ रही है उसके लिए वो स्वयं जा करके चाहे 112 नंबर पे या 1029 एक महिला हेल्पलाइन नंबर भी है, 1029 पे भी वो कॉल कर सकती है और नियरेस्ट अपने पास के थाने पे जाकर के प्रार्थना पत्र दे सकती है।
1: थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए।
0: एडवोकेट राकेश पांडे जी ने हमें काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आशा है कि ये सारी जानकारियां आप सबको अच्छे से समझ आई होंगी और आप सब भी महिलाओं के लिए बने कानूनों को जान पाए होंगे, पहचान पाए होंगे, और आगे भी किसी भी महिलाओं के साथ कोई भी प्रकार की हिंसा हो तो वो अपने इन कानूनी अधिकारों के द्वारा उस हिंसा के खिलाफ खड़ी हो सकती है। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ मिलकर कहिए हिंसा को नो।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 01204060205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सकें, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बता दें। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल आईक्यू तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये कैसा भाव है? टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये कैसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए। फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
2: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
2: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
3: अरे तारा ये क्या?
2: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी
5: जल रक्षक
4: खुद निगरानी।
2: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
2: और नल या पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
2: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: चलो चमन, अब हम खेले।
1: ओके। तारा, मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
0: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खरी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
1: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
0: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है, कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
1: हैं?
0: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
2: अरे बाबा रे, तो फिर

0: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
1: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया।
3: अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा।
0: हाँ, तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो। आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: ओले ओले ओले ओ शोना। हेलो, कौन?
1: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
2: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
1: जल्द मिलते हैं।
0: हेलो हेलो हेलो,
3: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
4: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका पर आधारित है।
1: पृष्ठ संख्या 1, भाग 1, जीव रूपों के साथ कार्य करना। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ छात्र छात्राएं जीव रूपों के साथ कार्य कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 2, जीव रूपों में पृथ्वी पर सभी सजीव वस्तुएं सम्मिलित हैं। इनमें मनुष्य, पशु, पक्षी, मछलियां, पौधे, कीड़े, यहां तक कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया और विषाणु यानी वायरस भी सम्मिलित हैं। जीव रूपों के साथ काम करने में परियोजनाएं आपको विभिन्न तरीकों से सजीव वस्तुओं के साथ काम करने में सहायता करेंगी। आप विभिन्न तरीकों से पौधे उगाने, अपने आसपास की जैव विविधता को अंकित करने, औषधीय पौधों का सर्वेक्षण करने, पालतू जानवरों की देखभाल करना और प्रकृति पत्रिका से संबंधित परियोजनाओं का चयन कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने साथियों के सहयोग से नया एवं रोचक क्या कर सकते हैं। इस खंड में परियोजनाओं के 2 उदाहरण दिए गए हैं। आपको केवल एक परियोजना ही चुननी होगी। आप इनमें से किसी एक परियोजना का चयन कर सकते हैं अथवा अपने शिक्षक की सहायता से अपनी रोचकता के अनुसार परियोजना तैयार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 3, परियोजना 1, विद्यालयी रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन। ये परियोजना आपको भोजन के लिए पौधे उगाने के विषय में सीखने में सहायता करेगी। आप अपने विद्यालयी परिसर में एक रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन बनाएंगे जो पौधों की क्यारियों या गमलों में तैयार किया जा सकता है। चित्र 1.1 का अध्ययन करें। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे: उपकरणों और सामग्रियों के विषय में जानने में, खेत बगीचे नर्सरी का भ्रमण करने में, वर्मी कंपोस्ट बनाने में, विद्यालयी रसोई उद्यान की व्यवस्था और रखरखाव की योजना बनाने में, पौधों की सुरक्षा, रसोई उद्यान के उपाय, देखभाल और रखरखाव के बारे में जानने में, फसल की कटाई में। यहाँ एक चित्र दिया गया है। चित्र 1.1, विद्यालयी रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन। यहाँ एक चित्र है, इसमें छात्र छात्राएं विद्यालयी रसोई उद्यान में कार्य कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 4, हम सभी विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लेते हैं। हम में से कुछ लोग ताजे फल और सब्जियां, कुछ शाक यानी हर्ब्स और मसालों के साथ पकी हुई सब्जियां और कुछ अचार एवं टमाटर सॉस जैसे संरक्षित खाद्य पदार्थ यानी प्रिजर्व्ड फूड के साथ खाना पसंद करते हैं। हमारे भोजन का अधिकांश भाग खेतों से आता है। सब्जियां यानी बैंगन, ककड़ी और मिर्च अथवा शाक यानी हर्ब्स, धनिया और पुदीना रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन में उगाई जा सकती हैं। रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन को सब्जियों के उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा उद्यान होता है जिसमें फल, सब्जियां और शाक यानी हर्ब्स उगाई जाती हैं।

करने के पश्चात आप ये कार्य करने में सक्षम होंगे। एक, सामान्य बागवानी औजारों, उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करने और उनके उपयोग का वर्णन करने में। दो, बागवानी उपकरणों का उपयोग करके विद्यालय के मैदान पर या गमलों में मिट्टी तैयार करने में। तीन, बीज या पौधों का रोपण सीखेंगे। पानी, खाद और उर्वरकों का उपयोग करके पौधों या बीजों की वृद्धि में उनकी सहायता करने में। चार, रसोई उद्यान में पौधों को बाड़ और जैविक कीटनाशकों की सहायता से सुरक्षित रखने में। पांच, रसोई उद्यान अथवा गमलों में सब्जियां या शाक यानी हर्ब्स की कटाई करने में मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए आपको विभिन्न उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आइए सबसे पहले इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तालिका 1.1 का अध्ययन कीजिए। पृष्ठ संख्या 5, तालिका 1.1। रसोई उद्यान में पौधों की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य उपकरण अथवा सामग्री। चित्र, उपयोग। एक, खुरपी यानी गार्डन ट्रावेल। खुरपी का चित्र, इसका उपयोग मिट्टी खोदने और पौधे रोपने के लिए किया जाता है। दो, हैंड कल्टीवेटर। हैंड कल्टीवेटर का चित्र, इस उपकरण का उपयोग मिट्टी को नरम करने, खरपतवार हटाने और मिट्टी में खाद मिलाने के लिए किया जाता है। तीन, हजारा यानी रोज अटैचमेंट या होज पाइप। हजारा का चित्र, इसका उपयोग क्यारियों या गमलों में नवांकुर और पौधों को पानी देने के लिए किया जाता है। चार, बागवानी दस्ताने, रबर से बने बागवानी दस्तानों का चित्र, इसका उपयोग हाथों की सुरक्षा और उपकरणों पर मजबूत पकड़ प्रदान करने के लिए किया जाता है। पांच, बागवानी कैंची, बागवानी कैंची का चित्र, इसका उपयोग बगीचे में शाखाएं, झाड़ियां एवं तना काटने के लिए किया जाता है। पृष्ठ संख्या 6, बीज नवांकुर, कंद, प्रकंद, कलम आदि के चित्र, इनका उपयोग बगीचे में पौधे उगाने के लिए किया जाता है। 7, गमले की मिट्टी अथवा मिश्रण यानी गमले के लिए मिश्रण खाद, परलाइट, वर्मीक्यूलाइट, मिट्टी और कॉयर या पीट मॉस जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है। गमले की मिट्टी का चित्र, इस सामग्री का उपयोग डिब्बों यानी कंटेनरों या गमलों को भरने के लिए किया जाता है। 8, जैविक मल्चिंग सामग्री जैसे अनाज का भूसा, पत्ती की खाद, कटी हुई पत्तियां, कटी हुई घास आदि। कटी हुई घास आदि का चित्र, इनका उपयोग नमी बनाए रखने और खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। 9, पौधों के सूचक पत्र यानी लेबलिंग। पौधों के सूचक पत्र का चित्र, इनका उपयोग बगीचे में विभिन्न पौधों की पहचान करने के लिए किया जाता है। 10, पुराने पाइप पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी पाइप, लकड़ी की डंडियां, बांस के खंभे, धातु के खंभे और रस्सी, पुराने पाइप आदि का चित्र, इनका उपयोग सुरक्षात्मक बाड़ बनाने के लिए किया जाता है। 11, कूड़ेदान और तिरपाल, पुराने मोटे कपड़े का टुकड़ा, कूड़ेदान आदि का चित्र, इनका उपयोग खाद या वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। 12, नीम की पत्तियां और जेरी कैन, बड़ी बोतल, नीम की पत्तियों आदि का चित्र, इन सामग्रियों का उपयोग जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

0: कीटनाशक का उपयोग पौधों से हानिकारक कीटों या कीड़ों को मारने या दूर रखने के लिए किया जाता है। 13. खाद, खाद का चित्र। खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है जो खेत में जानवरों के गोबर से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग पौधों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। चित्र 1.2 का अध्ययन कीजिए। 14. स्प्रे बोतल का चित्र। इसका उपयोग किसी तरल पदार्थ की कम मात्रा छिड़कने यानी स्प्रे के लिए किया जाता है। 15. फावड़ा, फावड़े का चित्र। ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी या अन्य सामग्रियों को खोदने और हटाने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, यदि आपको ये सभी उपकरण और सामग्री नहीं मिल पाती है तो चिंता न करें, आप अपने शिक्षक या विशेषज्ञ से विकल्प के बारे में पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 8। क्या आप जानते हैं, चित्र 1.2 में एक भैंस और कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं। ये व्यक्ति उस भैंस का गोबर इकट्ठा कर रहे हैं। भारत में पारंपरिक रूप से जानवरों के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता रहा है। मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? रसोई उद्यान में कार्य करते समय कुछ मुख्य सावधानियां हैं। 1. अपने शिक्षक से गमला उठाने के सही तरीके के विषय में पूछिए। यदि आपको लगता है कि गमला बहुत भारी है तो किसी की सहायता लीजिए। इसे अकेले उठाने की कोशिश न करें। चित्र 1.3। 2. अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए उपकरणों और सामग्रियों का प्रयोग करते समय दस्ताने पहनिए। सुनिश्चित कीजिए कि ये पूर्णतः आपके हाथों के आकार के अनुसार होने चाहिए ताकि उपकरणों पर आपकी पकड़ मजबूत हो। 3. बागवानी उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग करते समय सामग्री के सुरक्षित उपयोग के लिए दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। 4. प्रदर्शन के दौरान सही उपयोग और तकनीकों को समझने पर ध्यान दीजिए। 5. यदि आप किसी उपकरण का उपयोग करने के तरीके के बारे में अनिश्चित हैं तो किसी न किसी की सहायता अवश्य लीजिए। चित्र 1.3। बागवानी करते समय सुरक्षित रहिए। गमला सावधानी से उठाइए। औजारों का सही ढंग से उपयोग कीजिए। दस्ताने और एप्रन का उपयोग कीजिए और सामग्री के सुरक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध निर्देश पढ़िए। चित्र 1.3 में कुछ छात्र छात्राएं बागवानी कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 9। 6. औजारों और उपकरणों को जंग लगने से बचाने के लिए नियमित रूप से साफ कीजिए और धोने के बाद उन्हें पोंछिए। 7. सुनिश्चित कीजिए कि उपकरण स्टोर या अलमारियों पर व्यवस्थित तरीके से रखे गए हों ताकि उनसे किसी को चोट न पहुंचे। इंटरनेट सुरक्षा। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक से सहायता लीजिए। सतर्क रहिए कि बिना जांचे कुछ भी अपलोड या डाउनलोड न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी साझा न करें। आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? अपना रसोई उद्यान बनाने के विषय में प्रायोगिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किसी कृषि फार्म पर जा सकते हैं। यदि आपके विद्यालय के पास कोई खेत नहीं है तो आप किसी नर्सरी, बगीचे या बाग में भी जा सकते हैं। चित्र 1.4 का अध्ययन कीजिए। चित्र 1.4, विशेषज्ञ से सीखना। चित्र 1.4 में विशेषज्ञ छात्र छात्राओं को बागवानी से संबंधित कई बातें सिखा रहे हैं। गतिविधि 1। किसान, नर्सरी कार्यकर्ता, माली या विशेषज्ञ से परस्पर संवाद हेतु कृषि फार्म, नर्सरी या उद्यान का भ्रमण। भ्रमण से पहले प्रश्नों की एक सूची बनाना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। आप भ्रमण करने के बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। 1. कौन कौन से पौधे उगाए जा रहे हैं, उसको अंकित करने के लिए खाली स्थान दिया गया है। पृष्ठ संख्या 10। 2. क्या सभी पौधे एक ही समय पर लगाए गए थे? यदि नहीं तो क्यों? खाली स्थान। 3. क्या रसोई उद्यान में सभी पौधे उगाए जा सकते हैं? हाँ या नहीं? खाली स्थान। 4. बुवाई या रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? खाली स्थान। 5. पौधों को मिट्टी से मिलने वाले पोषण के अतिरिक्त पोषण किस प्रकार प्रदान किया जाता है? खाली स्थान। 6. पौधों को जानवरों और कीटों से किसी भी प्रकार के नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 11। 7. अपने भ्रमण के दौरान आपने कौन सी दो सबसे रोचक बातें सीखीं? खाली स्थान। अपने साथियों और शिक्षक के साथ अवलोकनों पर चर्चा कीजिए और भ्रमण के बाद पौधे उगाने के विषय में आपने जो सीखा उसे उल्लेखित कीजिए। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत में कृषि और पौधों के जीवन के विज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि तब मुख्य कार्य खेती और पशुओं का पालन पोषण था। पौधों के स्वास्थ्य, वृद्धि और रोगों के उपचार से संबंधित सारभूत ज्ञान और अनुभव को वृक्षायुर्वेद, पेड़ों के लिए आयुर्वेद नामक ग्रंथ में प्रलेखित किया गया था। वृक्षायुर्वेद के एक ही नाम से दो ग्रंथ थे, एक सालिहोत्रा लगभग 400 ईसा पूर्व और दूसरा सुरपाल 1000 ईस्वी द्वारा लिखा गया था। सुरपाल के वृक्षायुर्वेद की ताड़ के पत्ते पर लिखी पांडुलिपि की एकमात्र मौजूदा प्रति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संरक्षित है। ये पाठ पौधों की कई प्रजातियों की खेती, जल प्रबंधन, मिट्टी संरक्षण, उर्वरक और पौधों को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों और उनके उपचार से संबंधित है। वृक्षायुर्वेद में सुरपाल ने बिल्व, बेल या स्टोन एप्पल, नगरोध, बरगद, अश्वत्थ, अंजीर या टिग और नीम जैसे पवित्र पेड़ों के रोपण का वर्णन किया है। ये वेद कहता है कि वृक्ष लगाना मानव जीवन के अनेक लक्ष्यों में से एक को प्राप्त करना है। जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के कटाव और बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण वृक्षायुर्वेद जैसे ग्रंथों में निहित पारंपरिक ज्ञान में नए सिरे से रुचि उत्पन्न हुई है। इस ज्ञान का उपयोग मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने, अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 12। मुझे क्या करना है? पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया। यहाँ एक चित्र है, इसमें पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया को समझाया गया है। 1. उपकरण, औजारों एवं सामग्री की व्यवस्था। यहाँ उपकरण, औजारों और सामग्री की व्यवस्था करने के तरीके समझाए गए हैं। 2. वर्मी कंपोस्ट। यहाँ छात्र छात्राओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करना समझाया गया है। 3. यहाँ भूमि तैयार करना, खाद डालना एवं बीज बोना समझाया गया है। 4. निराई। इस चित्र में एक छात्र और एक छात्रा निराई कर रहे हैं। 5. बाड़ की व्यवस्था। इस चित्र में छात्र छात्राएं बाड़ लगा रहे हैं। 6. पौधों की देखभाल। इस चित्र में छात्र छात्राएं पौधों की देखभाल कर रहे हैं। 7. उपज कटाई। इस चित्र में छात्र छात्राएं उपज की कटाई के बाद खुशी मना रहे हैं। पृष्ठ संख्या 13। जैसा कि आप चित्र 1.5 में समझ सकते हैं, रसोई उद्यान में पौधों को बढ़ने में सहायता करने के लिए सावधानी पूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। आइए अब उन गतिविधियों का संचालन करते हैं जो आपका रसोई उद्यान विकसित करने में सहायता करेंगी और साथ ही स्वस्थ पौधे उगाने का तरीका भी सिखाएंगी। गतिविधि 2, विद्यालय के रसोई उद्यान की योजना तैयार करना। सर्वप्रथम भूमि क्षेत्र को मापने और रसोई उद्यान के विभिन्न घटकों को तय करने की आवश्यकता है। चित्र 1.6 का अध्ययन कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। नीचे दिए गए प्रश्न आपको रसोई उद्यान की योजना बनाने में सहायता करेंगे। 1. क्या आप अपने विद्यालय में उपलब्ध भूमि या गमलों या दोनों में रसोई उद्यान तैयार करने जा रहे हैं? खाली स्थान। 2. आप अपने रसोई उद्यान के क्षेत्रफल की गणना कैसे करेंगे? खाली स्थान। चित्र 1.6 रसोई उद्यान किचन गार्डन तैयार करना। यहाँ छात्र छात्राएं रसोई उद्यान तैयार कर रहे हैं। अपने रसोई उद्यान के स्थान का चयन करते समय आपको कुछ बातों पर विचार करना चाहिए, जैसे सूरज की रोशनी, जल निकासी और पौधों के मध्य दूरी, ताकि पानी देते समय आप सभी पौधों तक पहुंच सकें। पृष्ठ संख्या 14। 3. उद्यान के लिए स्थान चुनते समय आपने किन कारकों पर विचार किया? खाली स्थान। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व विशिष्ट तत्वों को संदर्भित करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि। पौधे इन्हें अपनी वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी से अवशोषित करते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए जैविक उर्वरक जैसे खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद तथा अकार्बनिक उर्वरक जैसे यूरिया और सुपर फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। आप ऐसे शाक या पत्तेदार सब्जियों को उगाने पर विचार कर सकते हैं जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आप धनिया, पुदीना, पालक या अन्य पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि आप अपने उद्यान से उपज जल्दी प्राप्त कर सकें। ये शाक या पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होती हैं, क्योंकि ये विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत होती हैं। अब अपने रसोई उद्यान के लिए पौधों का चयन कीजिए और बुवाई या रोपण के लिए बीज या पौधे की व्यवस्था कीजिए। गतिविधि 3, वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की कई विधियां हैं। ऐसी ही एक विधि का वर्णन दिया गया है। इस गतिविधि में आप सीखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। आप इंटरनेट पर अन्य तरीके भी ढूंढ सकते हैं या किसानों और अन्य विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। 1. वर्मी कंपोस्ट प्लास्टिक, लकड़ी या किसी अन्य जल प्रतिरोधी सामग्री से बने डिब्बे में तैयार किया जाता है। कूड़ेदान को तिरपाल या पुराने मोटे कपड़े के टुकड़े से ढकना चाहिए। अतिरिक्त पानी निकालने के लिए इसके तल में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र करने चाहिए। पृष्ठ संख्या 15। 2. कंपोस्ट डिब्बे में अपशिष्ट भरा होना चाहिए, जैसे रसोई का कचरा, गिरे हुए पत्ते और उद्यान का अन्य कचरा या कोई भी जैविक कचरा। आप अपने विद्यालय में मध्याह्न भोजन से प्राप्त किसी भी अपशिष्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसे घर या पास के ढाबे या रेस्तरां से ला सकते हैं। कचरे की इन परतों को वर्मी बेड, बेडिंग मटेरियल कहा जाता है। 3. अब वर्मी बेड को नम करने के लिए पानी डालिए। ये शिक्षक के निर्देशानुसार कीजिए। 4. लाल केंचुए आइसेनिया फेटिडा को वर्मी बेड के ऊपर डाला जाना चाहिए, जिससे वो उसमें बिल बना सके। चित्र 1.7। आप खेत या नर्सरी से केंचुए प्राप्त कर सकते हैं। 5. कंपोस्ट डिब्बे में केंचुओं को रसोई अपशिष्ट पदार्थ जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, कॉफी के अवशेष, अंडे के छिलके और गैर चिकनाई वाले खाद्य अपशिष्ट खिलाने चाहिए। मांस, डेयरी या तैलीय खाद्य पदार्थ और खट्टे फल डालने से बचिए, क्योंकि वे कीटों को आकर्षित कर सकते हैं या अपशिष्ट पदार्थों में उत्पन्न कृमि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 6. क्यारी पर आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव कर उसे नम रखा जाना चाहिए, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। नमी बनाए रखने और कीटों को रोकने के लिए इसे ढक्कन से ढकना चाहिए। साथ, जब वर्मी कंपोस्ट काला, भुरभुरा और मिट्टी जैसा हो जाए तो उसे डिब्बे के नीचे से निकाला जा सकता है, जो कि सामान्यतः कुछ ही महीनों में तैयार हो जाता है। चित्र 1.7 का। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केंचुए। यहाँ वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केंचुए हथेलियों में रखे हुए हैं। चित्र 1.7 ख। बचे हुए भोजन के अवशेषों का उपयोग कर तैयार किया गया वर्मी कंपोस्ट। यहाँ बचे हुए भोजन के अवशेषों का उपयोग करके तैयार किए गए वर्मी कंपोस्ट को हथेलियों में लिया गया है। पृष्ठ संख्या 16। क्या आप जानते हैं, यदि केंचुए उपलब्ध नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्टिंग से थोड़ी अलग प्रक्रिया का उपयोग करके खाद बना सकते हैं। आप इंटरनेट पर ठोस अपशिष्ट से वर्मी कंपोस्टिंग लिखकर खाद बनाने की प्रक्रिया खोज सकते हैं। प्रश्न आपके अधिगम की जांच करने में सहायता करेंगे। 1. वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपने किन सामग्रियों का उपयोग किया? खाली स्थान। 2. आपने कूड़ेदान में किस प्रकार के खाद्य अवशेष डाले? खाली स्थान। 3. समय के साथ आपने कंपोस्ट डिब्बे में क्या परिवर्तन देखे? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 17। गतिविधि 4, रोपण के लिए रसोई उद्यान तैयार करना। मिट्टी की तैयारी में किसी भी प्रकार के मलबे, कंकड़ पत्थर या अवांछित पौधों को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। ये पौधों के विकास में बाधा बन सकते हैं। इसके साथ ही इस चरण में सुनिश्चित करना है कि आपके पौधों की वृद्धि के लिए उन्हें पर्याप्त पोषण और उचित वातावरण मिले। चित्र 1.8। चित्र 1.8 रसोई उद्यान किचन गार्डन के लिए पौधों की क्यारियां बाएं और गमले दाएं। यहां दो चित्र हैं। एक चित्र में एक व्यक्ति और दो बच्चे किचन गार्डन में काम कर रहे हैं। दूसरे चित्र में गमले और खाद रखी हुई है। बीज बोने या पौधारोपण से पहले पौधों की क्यारियों या गमलों की मिट्टी तैयार की जानी चाहिए। आपको शिक्षक के निर्देशानुसार मिट्टी में खाद मिलाना होगा। नीचे दिए गए प्रश्न अधिगम जांच करने में सहायता करेंगे। 1. आपने रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की? खाली स्थान। 2. क्या आपने जैविक खाद का उपयोग किया? यदि हाँ, तो आपने मिट्टी में जैव खाद मिलाने के लिए किस अनुपात का उपयोग किया? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 18। गतिविधि 5, बीज बोना और पौधे रोपना। आपने गतिविधि 2 में अपने रसोई उद्यान में उगाए जाने वाले पौधों का निर्णय पहले ही कर लिया है। बीज बोने से पूर्व बीज के पैकेट पर दिए गए निर्देशों को पढ़िए, ताकि आप रोपण की अनुशंसित गहराई, दूरी और रोपण के उचित समय को समझ सकें। आप किसानों या बागवानों माली से पिछली फसल से संरक्षित किए गए कृषि बीजों को लेकर उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इस विषय में उनसे मार्गदर्शन अवश्य लीजिए। यदि आप पौधे रोप रहे हैं तो संबंधित विशिष्ट देखभाल निर्देशों के लिए उनके साथ मिले लेबल या टैग को पढ़िए। यदि लेबल उपलब्ध नहीं है तो उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए जिनसे आपने उन पौधों को प्राप्त किया है। 1. बीज बोना। नीचे दिए गए क्रम के अनुसार बीज बोइए। क. बीज बोने के लिए सुझाए गए अंतराल के अनुसार मिट्टी में छोटे छोटे छेद बनाइए। यदि आप गमलों में रसोई उद्यान बना रहे हैं तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है, प्रत्येक गमले में लगाए जाने वाले बीज या पौधों की संख्या कुछ कारकों द्वारा तय की जाती है, जिसमें पौधे का प्रकार, गमले का आकार और पौधे की वृद्धि सम्मिलित है। चित्र 1.9, खांचों में बीज बोना। इस चित्र में एक व्यक्ति खांचों में बीज बो रहा है। ख. बीज को आपके द्वारा बनाए गए छेदों में डालें। यदि बीज बहुत छोटे हैं तो उन्हें मिट्टी की सतह पर समान रूप से छिड़किए। चित्र 1.9 का अध्ययन कीजिए। ग, अनुशंसित रोपण गहराई का पालन करते हुए बीजों को हल्के से मिट्टी से ढक दीजिए। घ, बीज और मिट्टी के बीच अच्छा संपर्क सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी को हल्के से दबाइए। पृष्ठ संख्या 19। 2, पौधारोपण। यदि आप पौधारोपण कर रहे हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन कीजिए। क, तैयार मिट्टी में गड्ढे खोदिए। गड्ढे जड़ों की लंबाई से बड़े होने चाहिए। ख, पौधों को उनके कंटेनर से सावधानी पूर्वक निकालिए। ध्यान रखिए कि जड़ों को नुकसान न पहुंचे। ग, प्रत्येक पौधे को तैयार गड्ढे में रखिए। पौधे के चारों ओर की मिट्टी का स्तर उसके मूल डिब्बे में मिट्टी के स्तर से मेल खाना चाहिए। घ, गड्ढों को धीरे से मिट्टी से भरें। पौधे को उसके स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक पौधे के आधार के चारों ओर हल्के से दबाइए। स्थाई मार्कर की सहायता से सूचक पत्र लेबल पर पौधे का नाम और बुवाई की तारीख लिखिए। ये सूचक पत्र पुराने प्लास्टिक बैग से बनाए जा सकते हैं, जिन्हें अनुपयोगी कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर पर चिपकाया जा सकता है। उद्यान की प्रत्येक पंक्ति या खंड या प्रत्येक गमले में सूचक पत्र को शुरुआत में रखिए, ताकि ये पता चल सके कि उन्हें कब लगाया गया था। इससे आप पौधों की वृद्धि पर आसानी से ध्यान रख पाएंगे। अपने अधिगम जांच के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, आपने प्रत्येक प्रकार के बीज को कितनी गहराई में बोया? आपके द्वारा एकत्र की गई जानकारी को तालिका 1.1 में लिखिए। तालिका 1.1, बीज बोने की गहराई का विवरण। क्रम संख्या, पौधे का नाम, बीज बोने की गहराई सेंटीमीटर 1, 2, 3, 4। पृष्ठ संख्या 20। 2, आपने एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच कितनी जगह छोड़ी? आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को तालिका 1.2 में लिखिए। तालिका 1.2, पौधे से पौधे के बीच का विवरण संरक्षित करना। क्रम संख्या, पौधे का नाम, पौधे से पौधे के बीच की दूरी सेंटीमीटर 1, 2, 3, 4। 3, क्या आपके द्वारा उगाए गए सभी पौधों के लिए पौधों से पौधे के बीच की दूरी समान थी? हाँ, नहीं। गतिविधि 6, पौधों की देखभाल करना। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व, पानी, सूरज की रोशनी और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है, ताकि वे पनप सकें। इसके साथ ही पौधे कोमल होते हैं और उन्हें जानवरों, कीटों, बीमारियों या उनके लिए प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले नुकसान से भी सुरक्षित रखना चाहिए। पौधों की सामान्य सुरक्षा में बाड़ बनाना, साथ में पौधे लगाना, साफ सफाई, निराई गुड़ाई, हवा से सुरक्षा तथा कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग सम्मिलित है। 1, बाड़ बनाना। आपको पौधों को जानवरों और उन लोगों से सुरक्षित रखना होगा जो उन पर पैर रख सकते हैं। आप अपने रसोई उद्यान के चारों ओर बाड़ बनाकर ऐसा सुनिश्चित कर सकते हैं। क, बाड़ को बांस या स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके बनाया जा सकता है। ख, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई को मापिए जिसमें बाड़ लगाने की आवश्यकता है। ग, क्षेत्र का एक रेखा चित्र बनाइए और तय कीजिए कि बाड़ कहाँ लगाई जानी है। घ, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे बांस, पुराने पाइप या पुरानी लकड़ी की छड़ियों को डंडे के रूप में उपयोग करने के लिए एकत्र कीजिए और डंडों को बांधने एवं बाड़ बनाने के लिए मजबूत रस्सी का उपयोग कीजिए। पृष्ठ संख्या 21। नीचे दिए गए प्रश्न आपको आवश्यक सामग्री की मात्रा तय करने में सहायता करेंगे। एक, बाड़ लगाने के लिए आप कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे? खाली स्थान। दो, बाड़ लगाने के लिए आपको कितने डंडों और कितनी लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी? खाली स्थान। दो, पौधों की देखभाल और रख रखाव के चरण। का, पौधों और लताओं को सहारा देने के लिए डंडे का उपयोग कीजिए। पौधों को सहारा और स्थिरता प्रदान करने के लिए डंडे का उपयोग करना चाहिए, विशेष रूप से लंबे या कमजोर तने वाले पौधों के लिए जो ऊपर से भारी हो जाते हैं और गिर सकते हैं। चित्र 1.11। टमाटर, खीरे, मटर और सेम के पौधों को सहारा देने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको डंडों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आप बांस, एक पतली पुरानी शाखा जो पेड़ से गिर गई हो, या एक पुरानी धातु या प्लास्टिक पाइप का उपयोग कर सकते हैं। डंडे की ऊंचाई और मोटाई पौधे की लंबाई और वजन के अनुसार तय की जानी चाहिए। इसके बाद रस्सी का उपयोग करते हुए पौधे को डंडों से बांधिए। चित्र 1.11। पौधे को सहारा देना। यहाँ एक पौधे को एक डंडे के साथ सहारा देकर बांधा जा रहा है। पृष्ठ संख्या 22। ख, पौधों को पानी देना। पौधों को नियमित रूप से पानी देना आवश्यक है। ये सुनिश्चित कीजिए कि मिट्टी लगातार नम रहे, लेकिन उसमें जल भराव न हो, क्योंकि अधिक पानी देना पौधों के लिए हानिकारक होता है। तय कीजिए कि पौधों को पानी कैसे दिया जाएगा। आप पानी देने के लिए एक मग और बाल्टी, पानी देने का कैन या पाइप आदि का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 1.12 का अध्ययन करें। विशेषकर सूखे के दौरान पौधों को पर्याप्त पानी मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए एक समय सारणी विकसित कीजिए। नए पौधों को अधिक बार पानी देने की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के कारण पौधों में पानी की कमी को कम करने के लिए उन्हें प्रातःकाल या दोपहर के बाद पानी देना चाहिए। चित्र 1.12। नए बोए गए पौधों की क्यारियों में पानी देना। इस पृष्ठ पर एक चित्र बाईं ओर है, उसमें कुछ व्यक्ति पाइप से पौधों की क्यारियों में पानी दे रहे हैं। पौधों को पानी देने से पहले नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि इससे आपको पौधों को आवश्यकता के अनुसार पानी देने में सहायता मिलेगी। एक, आपको कैसे पता चलता है कि पौधे को पानी की आवश्यकता है? खाली स्थान। दो, आपको अपने पौधों को कितनी बार पानी देने की आवश्यकता है? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 23। तीन, पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय क्या है? खाली स्थान। चार, कौन से कारक पानी देने की मात्रा और आवृत्ति को प्रभावित करते हैं? खाली स्थान। ग, पानी देने के बाद मल्चिंग तकनीक का प्रयोग करें। नमी बनाए रखने, खरपतवारों को रोकने और मिट्टी का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए अपने पौधों के चारों ओर पुआल, लकड़ी की कतरन या कटे हुए पत्ते की परत लगाइए। घ, उद्यान की निगरानी और कीटों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना। जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए नीम का तेल, लहसुन, मिर्च और साबुन जैसे अवयवों का उपयोग कीजिए। आवश्यकतानुसार प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग कीजिए, साथ ही निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन कीजिए, ताकि पौधों के लिए लाभकारी कीटों, पक्षियों और जानवरों को न्यूनतम क्षति पहुंचे। क्या आप जानते हैं, नीम आधारित कीटनाशक एक जैविक कीटनाशक है जिसका उपयोग कृषि फसलों में कैटरपिलर, टिड्डे, सफेद मक्खी और एफिड्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आप आगे दिए गए चरणों का पालन करके जैविक कीटनाशक बना सकते हैं। 1. 500 ग्राम नीम की पत्तियां लीजिए। यदि संभव हो तो आप स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ से किसी अन्य कड़वे पौधे की पत्तियां लेने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 24। पत्तियों को अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। पत्तियों को तोड़ते समय आपको अच्छी सुगंध का अनुभव होगा। 2. तोड़ी हुई नीम की पत्तियों को 5 लीटर पानी में मिला लीजिए। 3. मिश्रण को एक जेरी कैन या बड़े आकार की बोतल में डालिए और लगभग 14 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। 4. एक छलनी का उपयोग करके तरल से अनावश्यक ठोस पदार्थों को अलग कीजिए। 5. आप इस कीटनाशक को स्प्रे बोतल में भरकर पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। अंगा, खरपतवार हटाना। नियमित रूप से खरपतवारों की जांच कीजिए और जैसे ही वे दिखाई दें उन्हें हटा दीजिए। चित्र 1.13। यदि आपके पास निराई गुड़ाई के लिए हैंड कल्टीवेटर है तो उसका उपयोग करना अच्छा है। यदि हैंड कल्टीवेटर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने शिक्षक से अन्य विकल्प पूछ सकते हैं। चित्र 1.13। हैंड कल्टीवेटर का उपयोग करके पौधे की क्यारी से खरपतवार निकालना। इस पृष्ठ पर बाई ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 छात्राएं हैंड कल्टीवेटर का उपयोग करके पौधे की क्यारी से खरपतवार निकाल रही हैं। अपने उद्यान को सजाइए। आपके उद्यान में उगने वाले पौधे पंक्तिबद्ध, उचित लेआउट और सजावट के साथ सुंदर दिखने चाहिए। उन तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे आप अपने उद्यान को सुंदर और व्यवस्थित बना सकते हैं, साथ ही उन तरीकों पर कार्य कर सकते हैं। अपने रसोई उद्यान को सजाने के लिए आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। 1. फूलों की क्यारियों या गमलों को सुंदर दिखाने के लिए पत्थरों का प्रयोग कीजिए। आप इन पत्थरों को आकर्षक रंगों से रंग सकते हैं। 2. सजावटी वस्तुएं बनाइए जिन्हें उद्यान से बाहर रखा जा सके, जैसे चित्रित मिट्टी के बर्तन, पत्थरों पर बनाई गई पेंटिंग या विद्यालय के आसपास रखी पुरानी वस्तुओं का उपयोग करके मूर्तियां आदि बनाइए। 3. उद्यान को पक्षियों से सुरक्षित रखने के लिए आप बिजूका भी बना सकते हैं। श्री नेकचंद द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके रॉक गार्डन नामक एक सुंदर उद्यान बनाया गया था। आप इससे प्रेरणा लेकर भी अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 25। गतिविधि 7, पौधों की वृद्धि का अवलोकन। पौधों की वृद्धि का अवलोकन उनके विकास और आवश्यकताओं को समझने में सहायक हो सकता है। अपने रसोई उद्यान में पौधों की वृद्धि पर ध्यान रखिए। चित्र 1.14। पौधों की लंबाई में परिवर्तन का निरीक्षण कीजिए और अवलोकन को लिखिए, जैसे पत्तियों के रंग में परिवर्तन, फूलों की उपस्थिति और कीटों द्वारा किया गया नुकसान आदि। आप एक डायरी रख सकते हैं जिसमें आप अपने अवलोकन को अंकित कर सकते हैं। अपने अवलोकन को लिखने के लिए तालिका 1.3 का उपयोग कीजिए। चित्र 1.14, पौधों की वृद्धि का अवलोकन। इस पृष्ठ पर दाहिनी ओर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ छात्र छात्राएं पौधों की वृद्धि का अवलोकन कर रहे हैं। तालिका 1.3, रसोई उद्यान में उगाए गए पौधों का अवलोकन। अवलोकन तिथि, अवलोकन, अंकुरों के उभरने, पौधों की लंबाई, कीटों, पत्तियों के रंग में परिवर्तन, फूल आदि का विवरण। सप्ताह 1, तिथि। सप्ताह 2, तिथि। सप्ताह 3, तिथि। पृष्ठ संख्या 26। अपने रसोई उद्यान की प्रगति का विवरण कैमरे द्वारा अलग अलग कोणों, एंगल से चित्र लेकर या रेखा चित्र बनाएं। पृष्ठ संख्या 26 पर रेखा चित्र बनाइए या चित्रों को चिपकाइए। सप्ताह 1, माह 1, सप्ताह दो, माह दो, पृष्ठ संख्या 27, फसल की कटाई, उपभोग के लिए तैयार होने पर फसल की कटाई कीजिए, चित्र 1.15, और उसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। आपको अपने शिक्षक से फसल की कटाई की विधि के विषय में अवश्य पूछना चाहिए। उदाहरण के लिए, साग और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए बारंबार कटाई, मल्टीपल कटिंग का उपयोग कीजिए। बाहर की पत्तियों की कटाई कीजिए जबकि अंदर की पत्तियों को बढ़ने दीजिए। गाजर और मूली जैसी जड़ वाली सब्जियों के लिए पौधे की सतह के आसपास की मिट्टी को नरम रखिए और उन्हें हाथ या फावड़े की सहायता से बाहर निकालिए। टमाटर, बैंगन, चित्र 1.16 का अध्ययन कीजिए और काली मिर्च जैसी फसल को बेल से काटने के लिए बागवानी में उपयोग की जाने वाली कैंची का इस्तेमाल कीजिए। ऐसी फसलों को बेल से अलग करने के लिए काटिए, साथ ही छोटे तनों को लगे रहने दीजिए। किसी भी मलबे, बाहरी पदार्थ या क्षतिग्रस्त उत्पाद को हटा दीजिए ताकि केवल उच्च गुणवत्ता वाली उपज ही शेष रहे। चित्र 1.16। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में बैंगन का पौधा एक गमले में लगा हुआ है। दूसरे चित्र में उगाए गए बैंगन रखे हैं। चित्र 1.15। अपने श्रम की उपज का आनंद लीजिए। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में एक बालक अपने श्रम की उपज का आनंद ले रहा है। पृष्ठ संख्या 28। इस पृष्ठ पर नीचे दिए गए क्रम के अनुसार प्रश्न आपके अधिगम की जांच करने में सहायता करेंगे। 1. आपने कौन सी फसल काटी? खाली स्थान। खाली स्थान। खाली स्थान। 2. आपको कैसे पता चला कि फसल कटाई के लिए तैयार थी? खाली स्थान। खाली स्थान। खाली स्थान। 3. पौधों की कटाई के लिए आपने किन उपकरणों का उपयोग किया? खाली स्थान। 4. कटाई के दौरान पौधों को नुकसान से बचाने के लिए आपने क्या सावधानियां बरती? खाली स्थान। 5. रसोई उद्यान से कटाई के बाद आपने उपज का क्या किया? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 29। गतिविधि 9, सब्जी मंडी का भ्रमण। स्थानीय सब्जी बाजार में जाइए, वहां सब्जियों और फलों का निरीक्षण कीजिए। विभिन्न सब्जियों और फलों के मूल्यों को लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर आपके द्वारा उगाई गई सब्जियों की मूल्य सूची तैयार कीजिए। तालिका 1.4 का अध्ययन कीजिए। तालिका 1.4, बाजार में सब्जी उपज की मूल्य सूची। सब्जी का नाम, कीमत। सब्जी का नाम, कीमत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गतिविधि 10, मूल्य निर्धारित करना। आप अपने रसोई उद्यान से प्राप्त उपज को मध्याह्न भोजन के लिए विद्यालय की रसोई में दे सकते हैं या उस पर अपने शिक्षक और साथियों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है। रसोई उद्यान से प्राप्त उपज की कीमत का अनुमान लगाने के लिए आपको कई कारकों पर विचार करना होगा, जैसे बीज या अंकुर का मूल्य, मृदा सुधार का मूल्य, उपकरणों का मूल्य, लेबल का मूल्य आदि। यदि आप उपज बेचने की योजना बनाते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? आप अपनी उपज की प्रत्येक वस्तु के लिए एक मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। आप अपने साथियों और शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए कि उपज के लिए मूल्य का निर्धारण करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 30। तालिका 1.5 में जानकारी लिखने के बाद मूल्य की गणना कैसे की जाए, ये जानने के लिए यहाँ एक सरल विधि प्रस्तुत की गई है। तालिका 1.5, रसोई उद्यान की उपज का अनुमानित मूल्य। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें 5 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में आपको ये लिखना है कि आपने क्या उगाया। दूसरे कॉलम में आपको ये लिखना है कि बीज, पौधे और अन्य सामग्री पर कितना पैसा खर्च किया। तीसरे कॉलम में ये लिखना है कि आपने कितनी मात्रा में फसल उपज की कटाई संख्या या वजन के अनुसार की है। चौथे कॉलम में ये लिखना है कि उपज का बाजार मूल्य क्या है। पांचवें कॉलम में ये लिखना है कि आपको अपनी फसल उपज के लिए कितना पैसा मिलेगा। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि पौधे बिना मिट्टी के भी उगाए जा सकते हैं। मनी प्लांट की एक टहनी लीजिए और इसे पानी से भरी एक पुरानी बोतल में रखिए। बोतल को तेज लेकिन अप्रत्यक्ष धूप अर्थात अधिक तापमान वाले स्थान पर रखिए। प्रत्येक सप्ताह पानी बदलना न भूलिए। ये करने के बाद देखिए कि मनी प्लांट की टहनी में क्या क्या परिवर्तन होता है। पृष्ठ संख्या 31। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कुशल रसोई उद्यान। आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करके एक कुशल रसोई उद्यान का निर्माण कर सकते हैं। AI पौधों की पहचान करने, पौधों को पानी देने, पौधों की वृद्धि को अंकित करने, कीटों की पहचान करने आदि में आपकी सहायता करता है। AI का उपयोग करके योजना बनाना और विकसित करना। 1. उपयुक्त सब्जियों और शाख की खोज कीजिए और जानिए कि उन्हें कब लगाया जाना चाहिए। मोबाइल फोन पर AI एप्स आपके स्थान के अनुसार पौधों का सुझाव देते हैं। 2. सूरज की रोशनी और पौधों के मध्य की दूरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्यान क्यारियों के लेआउट या गमलों के स्थान की योजना बनाइए। कुछ पौधे सुव्यवस्थित ढंग से विकसित होते हैं जब वे अन्य पौधों से घिरे होते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधों को विकसित होने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। रसोई उद्यान बनाना। 1. उभरी हुई क्यारियों या गमलों को उचित मात्रा में मिट्टी से भरिए और सुनिश्चित कीजिए कि अतिरिक्त पानी जमा न हो। 2. आवश्यक दूरी और गहराई के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए बीज या पौधे रोपिए। 3. सुगमता पूर्वक पहचान के लिए प्रत्येक पौधे पर उसका नाम और रोपण तिथि लिखिए। आप सूचक पत्र लेबल का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और सूचक पत्र पर पौधे का चित्र भी चिपका सकते हैं। कुशल देखभाल और निरीक्षण। उपयुक्त उद्यान प्रबंधन ऐप या उद्यान अभिलेख ऐप ढूंढिए। पौधों का नियमित रूप से निरीक्षण कीजिए। पौधों की प्रगति का अवलोकन करने, कीटों या बीमारियों जैसे संभावित मुद्दों की पहचान करने के लिए ऐप का उपयोग कीजिए। 1. किसी भी अपरिचित पौधे को पहचानने के लिए छवि पहचान इमेज रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग कीजिए। ये खरपतवार या पिछले मौसम के बचे हुए बीजों से उगने वाले पौधे भी हो सकते हैं। 2. AI ऐप सुझावों और अतिरिक्त इंटरनेट खोजों के आधार पर पानी देने की सही समय सारणी, खाद डालने और कीटों का शीघ्र पता लगाने आदि की जानकारी प्राप्त कर उन्हें क्रियान्वित कीजिए। 3. पौधों की वृद्धि और अन्य संबंधित पहलुओं का अवलोकन कीजिए और अपनी रुचियों के अनुसार दस्तावेज तैयार कीजिए। इस तरह आप अपने अधिगम भ्रमण का विवरण रख सकते हैं। जियो टैगिंग, जो विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे फोटो, वीडियो, वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट में भौगोलिक जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया है, आपके रसोई उद्यान के लिए भी उपयोगी हो सकती है। आप अपने उद्यान को जियो टैग करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो गमलों में या किसी अन्य रूप में हो। पृष्ठ संख्या 32। मैंने दूसरों से क्या सीखा। गतिविधि कार्य के दौरान 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें लिखिए जो आपने दूसरों से सीखी हैं। वे रसोई उद्यान बनाने, पौधों की देखभाल करने या दूसरों के साथ काम करने से संबंधित भी हो सकती हैं। अंकित करने के लिए खाली स्थान दिया गया है। मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है। प्रत्येक गतिविधि को क्रियान्वित करने में आपने कितना समय व्यतीत किया, इसका आकलन अवश्य कीजिए। इसे नीचे दी गई समय रेखा पर चिन्हित कीजिए। यदि आपने पुस्तिका में सुझाई गई गतिविधियों में अधिक समय लिया है तो संख्या और अतिरिक्त समय जोड़िए। गतिविधि, समयावधि, कालांश। यह एक चित्र दिया गया है जिसमें 9 गतिविधियों के लिए क्रम संख्या दी गई है और उन गतिविधियों को करने में कितना समय लगा उसको अंकित करने के लिए खाली स्थान दिया गया है। मैं और क्या कर सकता हूं, मैं और क्या कर सकती हूं। 1. अपने घर पर एक गमला उद्यान की रचना कीजिए। अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए कि इसके लिए आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी ताकि आप योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकें। 2. आपके द्वारा उगाए गए पौधों के वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। 3. अपने रसोई उद्यान को जियो टैग कीजिए और इसमें देशांतर और अक्षांश निर्देशांक सम्मिलित कीजिए। पृष्ठ संख्या 33। सोचिए और जवाब दीजिए। 1. आपको क्या करने में आनंद आया। 2. गतिविधियों के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 3. आप अगली बार क्या नया या अलग करेंगे। 4. वे कौन सी स्थितियां थीं जिनसे आपके पौधों की वृद्धि में सहायता प्राप्त हुई। यदि आपके पौधे अच्छी प्रकार से विकसित नहीं हुए तो आपको अगली बार क्या क्या करना चाहिए। 5. परियोजना से संबंधित कौन सी नौकरियां हैं। अपने आसपास देखिए, लोगों से बात कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। आपके द्वारा क्रियान्वित की गई गतिविधियों से संबंधित नौकरियों के कुछ उदाहरण हैं: किसान, माली, कृषि वैज्ञानिक, कृषि उपकरण मैकेनिक, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर मैकेनिक। इसके साथ ही अध्याय 1 समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, वाचन स्वर मुइनुल हुसैन, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: धरती मेरी धरती।

धरती मेरी धरती, लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 24वीं कड़ी, कभी जानूं कभी ना जानूं। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि जब सतही जल स्रोतों से पर्याप्त शुद्ध जल नहीं मिलता तो हम भूमिगत जल पर आश्रित हो जाते हैं। क्या कारण है कि दिनों दिन भूगर्भ जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है? तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 24वीं कड़ी, कभी जानूं कभी ना।

0: पता है मुझे सब पता है।
1: मानव, ऐसा हो सकता है कि किसी को सब कुछ पता हो?
0: क्यों नहीं हो सकता, मैंने सागरों महासागरों के बारे में जान लिया है, कैसे पानी भूमध्य रेखा से ध्रुवीय प्रदेशों तक पहुंचता है।
1: अरे मानव, बस यही है क्या समझने को?
0: दीदी मुझे और भी बहुत कुछ पता है। ठंडा ज्यादा खारा पानी नीचे बैठता है क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, और महासागर में कैसे ऊर्जा का संचरण होता है, कैसे घनत्व में भिन्नता होती है, कैसे पोषक तत्वों का बंटवारा होता है, लगभग सभी कुछ तो पता है मुझे।
1: लगभग ना, सब कुछ तो नहीं। सुन मानव, ये अच्छी बात है कि तुझे इतना कुछ पता है और याद भी रहता है, पर मानव जीवन में सीखना सिखाना तो चलता ही रहता है।
0: अच्छा वो तो ठीक है, पर
2: सृष्टि, अरे सृष्टि किसे सिखा पढ़ा रही है?
1: और किसे विवेक भैया, इस मानव को सुबह से सुन रही हूँ मैं। इसका दोस्त हैप्पी आया था, कुछ भी कहे तो मानव का जवाब पता है, इसे सब पता है, अपने ज्ञान की शेखी बघारना इसे खूब आता है।
2: क्यों भाई मानव, अभी तो हमें सब पता नहीं चला और तुम अभी से सब जान गए?
0: सब नहीं विवेक भैया, मैं तो महासागरों और वायुमंडल के संचरण की बात कर रहा था, उसके बारे में तो मुझे सब कुछ पता ही है।
2: मानव सब कुछ नहीं, हाँ बहुत कुछ। अच्छा चलो मैं तुम्हारा ज्ञान परख लेता हूँ, बताओ मानव।
1: रहने दो विवेक भैया, अभी इस्लाम अंकल आ तो रहे हैं, वही पूछेंगे अपने प्यारे मानव से सारे सवाल।
0: क्या इस्लाम अंकल आ रहे हैं? अरे वाह, उन्होंने तो कहा था कि मैं बहुत होशियार हूँ।
2: उनका इंतजार तो होगा ही।
0: बिल्कुल,
1: लगता है मम्मी पापा इस्लाम अंकल को लेकर आ गए। नमस्ते अंकल।
3: नमस्ते नमस्ते नमस्ते सृष्टि बेटी, और कैसे हो विवेक?
2: बिल्कुल ठीक अंकल।
4: भाई साहब आप बैठिए, मैं जल्दी से चाय बना कर लाती हूँ।
5: सुधा कुछ नाश्ता भी ले आना। हाँ इस्लाम, बैठो बैठो। हाँ, अरे मुंबई से दिल्ली काफी लंबा सफर है, बैठो आराम करो।
6: पीजिए अंकल पानी।
3: धन्यवाद बेटी। अरे ये

0: मानव कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं मुझसे फिर से तो डरने नहीं लगा?
1: नहीं अंकल, उसका डर तो जब आप पिछली बार आए थे तभी दूर हो गया था।
0: अच्छा।
1: लेकिन महासागरों, वायुमंडल के संचरण को जानकर ना वो अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा है।
2: अंकल, उसे लगता है कि उसे सब पता है।
0: चलो भाई, उससे कुछ हम भी सीख लेते हैं। पर वो है कहाँ?
1: पता नहीं, यही तो था अभी। मानव, मानव!
3: अरे सृष्टि, क्यों चिल्ला रहे हैं? मानव शांति से अपने कमरे में पढ़ रहा है। भाई से दीजिए, चाय लीजिए ना। कैसी बातें कर रहे हैं
4: हम? अपना ही घर है भाई।
1: नमस्ते अंकल।
4: ओ मानव।
0: अरे अरे मानव, नमस्ते भाई, नमस्ते। पर आप थे कहाँ? देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए।
1: क्या लाए हैं अंकल?
0: दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो,
1: ग्लोब। ग्लोब?
0: हाँ बेटे, ग्लोब। और ये मैं अपनी जर्मनी की यात्रा से लाया हूँ। ये हमारी धरती के, मेरा मतलब असली धरती के बहुत करीब है।
1: अरे वाह,
4: अच्छा तो लग रहा है।
1: कितने सुंदर रंग है ना। हाँ। और कितना बड़ा भी है, और इसका तो स्टैंड भी है। अंकल, ये अपने स्टैंड पर कुछ टेढ़ा नहीं लगा हुआ?
0: अरे हाँ, ये ग्लोब तो कुछ टेढ़ा है। क्यों सृष्टि, तुम्हें क्या लगता है?
1: क्या अंकल, सही तो है, ग्लोब हमारी धरती का ही तो मॉडल है। जब धरती एक निश्चित कोण पर झुकी है तो ग्लोब भी झुका होगा।
0: शाबाश सृष्टि बेटी, शाबाश। हाँ मानव, तो अब समझ आया कि सृष्टि ने क्या कहा। इसी कोण पर झुके होने के कारण धरती पर अलग अलग मौसम बनते हैं।
1: हाँ अंकल, पता तो है, इसी कोण के कारण सर्दी और गर्मी आती है। वो पता तो है, बस जरा दिमाग से उतर गया।
2: मानव को तो सब पता है।
4: भाई इस्लाम, बच्चों से बातचीत तो चलती रहेगी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो।
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं सूर्य प्रकाश, बच्चों से बातचीत करना आराम ही तो है। क्यों?
1: हाँ पापा, बातें भी हो जाती हैं और आराम भी।
3: तुम्हें तो मजे आएंगे ही, तुम थोड़े ना मुंबई से आए हो। चलो अंकल को आराम करने दो, शाम को बातें करना, ठीक है?
0: अरे रहने दो भाभी, कौन सा रोज रोज मिलते हैं, और वैसे भी मानव से अभी बहुत कुछ सीखना है।
3: आप भी भाई साहब।
1: मुझसे क्या सीखना है अंकल? क्यों, तुझे तो सब पता है, इसीलिए अंकल तुझसे कुछ सीखना चाहते हैं।
3: नहीं, वो तो मैं सिर्फ महासागर और वायुमंडल के आपसी तालमेल की जानकारी की बात कर रहा हूँ।
2: हाँ, मानव उसी के बारे में समझा देना।
3: हाँ, इसके बारे में तो मुझे सब मालूम है।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो ये बताओ, अगर मैं इस पानी से भरे गिलास को हल्का सा टेढ़ा करूं तो क्या होगा?
3: गिलास टेढ़ा हो जाएगा, और क्या।
0: हाँ भाई, गिलास तो टेढ़ा होगा ही, पर उसमें रखे पानी का क्या होगा?
3: पानी अगर बाहर नहीं गिरा तो गिलास तो टेढ़ा रहेगा, और पानी जमीन के समतल बना रहेगा।
0: अरे वाह, शाबाश मानव। यानी तुम ये मानते हो कि तल कैसा भी हो, पानी की सतह समतल बनी रहती है, यानी एक बराबर रहती है। पानी में, या कहें सभी तरल पदार्थों में ये गुण होता है कि उनकी ऊपरी सतह हमेशा बराबर बनी रहती है। भले ही गिलास में कुछ कंकड़ पत्थर डालो तो देखोगे कि तल तो उबड़ खाबड़ हो गया है, परंतु पानी की सतह समान और शांति बनी हुई।
2: अब देखो मानव, समुद्र तल में इतनी खाइयां हैं, पहाड़ हैं, पर सतह का पानी बराबर ही रहता है।
1: हाँ, हवा से लहरें बनती हैं, पर फिर भी पानी एक समान रहता है।
3: हाँ, तभी तो धरती गोल नजर आती है, क्योंकि धरती के गहरे गड्ढों को पानी ने भरकर सतह के बराबर कर दिया है।
0: तो भाई मानव, तुम ये मानते हो कि पानी अपने को बराबर बनाने में माहिर है, ठीक?
3: बिल्कुल ठीक अंकल, ये सब तो मुझे पता है।
1: देखा अंकल, मानव को सब पता है, जीनियस है हमारा मानव।
0: जीनियस तो है। अच्छा मानव, अगर मैं कहूँ कि इसी धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ महासागर का पानी बाकी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा ऊपर उठा होता है, मानव तुम्हें तो पता ही होगा भाई।
3: हाँ अंकल, पता है, ऐसा होता तो है।
0: हाँ ऐसा होता है, मगर ऐसा क्यों होता है मानव?
1: बता मानव, बता, तुझे तो सब पता है।
4: वैसे इस्लाम, क्या वाकई ऐसा होता है?
0: हाँ हाँ, सूर्य प्रकाश, ऐसा होता है। शायद मानव को भी पता है लेकिन अभी उसे याद नहीं आ रहा है।
2: यही होगा है ना मानव? अंकल मेरे ख्याल से आप वॉकर संचरण की बात कर रहे हैं ना?
0: अरे वाह वाह वाह, शाबाश विवेक, शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वॉकर संचरण की बात ही कर रहा हूँ।
1: ये वॉकर संचरण क्या है?
5: क्या जीनियस मानव को वॉकर संचरण नहीं पता? अरे ये कैसे?
2: नहीं सृष्टि, पता होगा इसे, शायद सब कुछ जानने वाले मानव साहब थोड़ा भूल गए होंगे। क्यों मानव?
1: क्या भैया, बताओ ना ये वॉकर संचरण क्या है?
0: मैं बताता हूँ। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रशांत महासागर के भाग का मौसम ज्यादातर तो सामान्य ही रहता है, यानी सूरज की गर्मी से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पश्चिमी तट के आसपास के महासागर का पानी गर्म हो जाता है,
2: जिस कारण गर्म और नम हवा की भारी मात्रा हजारों फीट ऊपर उठती है, जिससे महासागर की सतह पर कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है।
0: हाँ।
2: और जब ये गर्म नमी से भरी हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तो ये हवा में समाई नमी बारिश के रूप में बरसती है, और यही बारिश उस क्षेत्र में मॉनसून की वर्षा कहलाती है।
1: हाँ, समझे भैया? ये तो मुझे भी पता है कि गर्म नम हवा ऊपर उठती है और फिर बारिश होती है, इतना तो मैं जानता ही
2: हूँ।
5: हमारा मानव सब जानता है, तो फिर बता वॉकर संचरण।
1: बस यही नहीं पता
5: तो चुपचाप सुन।
0: हाँ तो भाई मानव, ये नमी से भरी गर्म हवा जो बरसकर शुष्क और हल्की हो चुकी है, ऊपरी वायुमंडल में मौजूद हवाओं की दिशा के कारण पूर्वी दिशा की ओर बढ़ चलती है। ऊंचाइयों पर चलते या कहें बहते बहते ये हवा और ठंडी होती जाती है और इसका घनत्व भी बढ़ता जाता है।
2: और जब ये हवा अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंचती है तब तक ये इतनी ठंडी और भारी हो चुकी होती है कि नीचे की ओर बहने लगती है, जिससे अमेरिका के पश्चिमी तट पर पानी की सतह में उच्च दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है।
0: बहुत अच्छे विवेक, शाबाश।
4: वेरी गुड, वेरी गुड विवेक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
2: कह लीजिए,
4: आई एम लाइक फादर लाइक सन।
0: क्या बात है। अच्छा, तो फिर यही नीचे आई हवा व्यापारिक हवाओं के रूप में वापस ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की ओर चल देती है।
1: लेकिन अंकल, वॉकर सेंचुरी कहाँ गया? बताइए।
0: बताता हूँ मानव, देखो ये जो महासंचरण का लूप बना, यानी ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूरब की ओर हवा का बहाव और निचले अक्षांश पर पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली हवा के इस पूरे संचरण को वॉकर संचरण कहते हैं, समझे?
1: समझा।
5: पर भाई साहब, इसे वॉकर संचरण क्यों कहते हैं?
4: अरे वाह, वसुधा को भी वॉकर संचरण में पूरी रुचि है।
2: अरे मम्मी मैं बताता हूँ, असल में इस संचरण का नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक सर गिलबर्ट वॉकर के नाम पर रखा गया।
5: अच्छा।
2: जिन्होंने 1920 के दशक में इस प्रक्रिया का अध्ययन किया था।
5: अब समझी।
1: और उन्हीं के नाम पर कहलाया वॉकर संचरण। समझ गया। अब तो मैं सब कुछ जानता हूँ
4: फिर से।
1: पर अंकल, आप बता रहे थे कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पानी एक तरफ कुछ उठा रहता है, यानी समतल नहीं रहता, ऐसा कहाँ होता है?
5: लो, अभी कह रहा था कि सब जानता हूँ और तुरंत सवाल भी पूछने लगा। चलो मैं भी आई।
0: हाँ तो मानव, इसी वॉकर संचरण में जब ये व्यापारिक हवाएं निचले अक्षांश पर पश्चिम की ओर बहती है ना, तो ये महासागर की ऊपरी परत के गर्म पानी को भी अपने साथ धकेलती है, जिस कारण गर्म पानी इंडोनेशिया के पास जाकर जमा होने लगता है।
2: और जानते हो मानव, यहाँ हवा की गतिविधियों और तापीय फैलाव के कारण इंडोनेशिया के तट के पास प्रशांत महासागर का स्तर मेक्सिको के पश्चिमी तट की तुलना में करीब 18 इंच यानी 1.5 फीट ऊपर होता है, जानते हो?
1: अच्छा, आप समझा
2: आखिरकार। अच्छा इस्लाम अंकल, आप एक बात बताइए।
0: हाँ, पूछो बेटा।
2: ये जो गर्म पानी की ऊपरी परत को व्यापारिक हवाएं अपने साथ धकेल ले जाती हैं, इसी के कारण ही तो पेरू और इक्वेडर जैसे पूर्वी प्रशांत में स्थित देशों के तट के पास के पानी में मछलियों की खूब भरमार होती है ना?
0: हाँ विवेक बेटा,
1: पर ऐसा क्यों होता है अंकल?
5: अरे मानव जी, आपको नहीं पता? हाँ? ऐसा कैसे?
0: मैं बताता हूँ। पूर्वी प्रशांत खास तौर से इक्वेडर और पेरू में समुद्र की सतह के नीचे का ठंडा पानी सतही पानी के हटाए जाने पर उसकी जगह ले लेता है, यानी जब व्यापारिक हवाएं अपने बहाव के साथ पानी को पश्चिमी दिशा मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की ओर ले जाती हैं, तो पूर्वी छोर पर मौजूद समुद्र का गहरा पानी ऊपर की ओर उठता है।
2: अब ठंडा पानी सागर की गहराइयों से उठकर ऊपरी सतह पर गर्म पानी की जगह लेने आता है, जो अपने साथ लाता है सागर की गहराइयों में मौजूद पोषक तत्वों को।
5: और हाँ। इन पोषक तत्वों पर खूब समुद्री जीव पलते हैं, है ना भैया?
2: सृष्टि बिल्कुल ठीक। और इसीलिए इक्वेडर, पेरू आदि देश मछली उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष पे शामिल है।
1: समझ गया कि क्यों पश्चिमी प्रशांत का पानी 18 इंच के ऊपर उठा रहता है और क्यों पूर्वी प्रशांत के देशों में मछलियों की भरमार होती है। देखा, अब तो मुझे महासागरों के बारे में सब कुछ पता चल ही गया है ना?
0: भाई सब कुछ तो शायद खुद समुद्र को भी नहीं पता है। भाई मानव तो बस अपनी जिज्ञासा में ज्ञान अर्जित करने पर लगा रहता है।
1: थैंक यू अंकल।
5: अरे इस्लाम अंकल तुझे नहीं कह रहे थे, बल्कि मानव यानी मनुष्य की बात कर रहे थे।
0: अच्छा अच्छा। हाँ तो मानव, तुम जानते हो कि कई बार ऐसे कई कारणों से जो वैज्ञानिक अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, ऐसा भी होता है कि कुछ वर्षों के अंतराल में ये व्यापारिक हवाएं या तो कुछ कमजोर पड़ जाती हैं या फिर बिल्कुल ही रुक जाती हैं। फिर बता सकते हो कि क्या होता है?
1: अंकल फिर ये जो पानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर इन व्यापारिक हवाओं के कारण जमा होता है, हा? वो रुक जाएगा और ये गर्म पानी पेरू या इक्वेडोर के तटों पर ही बना रहेगा।
0: शाबाश मानव, बहुत ही अच्छे।
5: वाकई में मानव है तो होशियार।
2: अच्छा मानव, पता है इस तरह की घटना जो कुछ वर्षों के अंतराल पर होती है, जिसमें व्यापारिक हवाओं में अचानक ही ऐसा बदलाव आता है कि वो या तो कमजोर पड़ जाती हैं या फिर रुक जाती हैं और फिर ठीक वैसा ही होता है जैसा तुमने कहा, उसे क्या कहते हैं?
1: नहीं भैया।
5: चलो किसी बात के लिए तो मानव ने नहीं कहा।
0: हाँ। अरे भाई मानव, इसे कहते हैं एल नीनो।
1: एल नीनो यानी?
2: अरे मानव, एल नीनो का स्पैनिश भाषा में मतलब होता है शिशु या कहें बालक ईसा, क्योंकि ये पेरू आदि में दिसंबर के माह में क्रिसमस के आसपास आता है, समझे?
5: पर विवेक भैया, इस एल नीनो के कारण पोषक तत्वों से भरपूर गहरा पानी ऊपर नहीं आ पाता है और पोषण न मिलने के कारण मछलियां भी मर जाती हैं, तो पेरू आदि देशों में एल नीनो तो अभिशाप की तरह होगा।
0: बिल्कुल सही कहा सृष्टि बेटी, पेरू इक्वेडर ही क्यों, कई देशों पर एल नीनो का प्रभाव पड़ता है। लगभग आधी पृथ्वी की जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ता है।
1: कैसा प्रभाव अंकल?
2: इस एल नीनो के कारण पेरू जैसे सामान्यता सूखे देश में खूब बारिश होती है, कई बार भयानक बाढ़ आती है। जब पानी भरता है तो मच्छरों की तादाद भी बढ़ती है और मलेरिया का प्रकोप फैलता है।
0: हाँ, 1997 के अंत में उष्णकटिबंधीय प्रशांत से हिरोशिमा पर गिराए गए करीब लाखों बमों के बराबर ऊर्जा से भरा पानी अपने साथ एल नीनो पूर्वी प्रशांत के इन तटों पर लाया, जिसमें 1997-98 में करीब 2100 लोगों की मौत हुई और कम से कम 33 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।
2: और जानते हो मानव, इसके अलावा मंगोलिया में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और केनिया में सामान्य से 40 इंच अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई।
1: अच्छा, इतनी दूर तक प्रभाव था?
2: हाँ मानव, मध्य यूरोप में तो भीषण बाढ़ आई, जिसके कारण पोलैंड में 55 और चेकोस्लोवाकिया में 60 मौतें हुई। साथ ही अमेरिका में फ्लोरिडा जैसे तटीय राज्य में कई चक्रवातों का हमला हुआ, हालांकि सामान्य से कम चक्रवात आए।
0: हाँ।
1: ये चक्रवात कैसे बनते हैं?
5: अरे मानव, पहले एल नीनो तो जान ले, फिर चक्रवात पूछना। अच्छा अंकल, क्या इस एल नीनो का हमारे भारत पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है?
0: देखो सृष्टि बेटी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एल नीनो के कारण गर्म पानी बारिश बनकर पश्चिमी प्रशांत के क्षेत्रों को भिगोता है, वो तो अमेरिका पश्चिमी तट की ओर चल देता है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में भयंकर सूखा पड़ सकता है। अगर एल नीनो बहुत ताकतवर है तो भयंकर सूखा पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी बहुत बारिश में कमी आ जाती है।
2: अंकल मैंने कहीं पढ़ा है कि 1779 से 1793 तक चले एल नीनो के दौरान भारत में सूखे और फिर अकाल से करीब 600,000 लोग मारे गए।
0: हाँ ठीक कहा विवेक तुमने। उत्तरी अमेरिका जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहां धरती के 8 से 13 किलोमीटर ऊपर बहने वाली जेट स्ट्रीम में भी नाटकीय बदलाव आता है। ये ध्रुवीय जेट स्ट्रीम थोड़ा खिसक कर कनाडा के उत्तर में चली जाती है जिस कारण ठंडी हवा ऊपरी अमेरिका की ओर कम जाती है जिससे सामान्य से गर्म तापमान रहता है।
2: अंकल व्यापक रूप में देखे तो एल नीनो के प्रभाव के चलते प्रशांत के पूर्वी तटों पर अत्यधिक बारिश और बाढ़, गर्म पानी के कारण पोषक तत्वों का ऊपर न आना जिससे समुद्री जीवों में कमी, दक्षिणी अमेरिका में तूफान और तेज आंधियां, और अटलांटिक में सामान्य से कम चक्रवात आते हैं।
0: हाँ विवेक, एल नीनो के कारण जो समुद्र का तापमान बढ़ता है इससे प्रवाल भित्ति जैसे नाजुक पारितंत्रों पर भी बुरा असर पड़ता है।
5: वो कैसे अंकल?
0: भाई सृष्टि बेटे, ये प्रवाल भित्तियां कई प्रकार के पौधों और मछलियों की शरण स्थली होते हैं। इन प्रवाल भित्तियों के आसपास जमा शैवाल जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है वो शैवाल इस गर्म पानी और सूरज की तेज रोशनी में नष्ट हो जाते हैं जिससे प्रवाल भित्तियां सफेद होकर मर जाती हैं और इन्हें फिर से पनपने में बहुत समय लगता है।
1: इस एल नीनो के कारण पेरू और अन्य दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में खूब बारिश क्यों होती है?
5: अरे भाई आप लोगों की बातें तो बहुत लंबी हो रही थी भाई। देखिए इसलिए मैं जल्दी से चाय बना लाई।
4: अरे वाह वाह, ये तुमने बहुत बढ़िया किया।
5: और इस बार पकौड़े हैं।
4: अरे
1: अरे
5: भाई साहब चाय भी घर में
4: तुम भी लो ना
1: ले।
0: भाई ये तो और भी बढ़िया है भाभी। इससे मानव को उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में बारिश होने का कारण समझ आ सकेगा।
5: ये भला कैसे?
1: गर्म चाय से वो कैसे अंकल?
0: अच्छा सृष्टि बेटे वो जरा पानी का गिलास देना।
1: हाँ जी लीजिए
0: बेटा। हाँ हाँ तो मानव तुम चाय या पानी को मत छुओ, इनके ऊपर की हवा को महसूस करो।
4: हाँ बेटा ध्यान
5: से मानव।
1: अंकल चाय की ऊपर की हवा भी गर्म है।
0: बिल्कुल सही माना, यानी गर्म पानी अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देता है। ठीक।
1: हाँ अंकल।
0: अच्छा आप सोचो कि ऐसे ही गर्म पानी से भरा बड़ा टब अगर बंद गुसल खाने में हो तो?
1: तो अंकल वहाँ भी भाप से गर्मी बढ़ जाएगी।
0: शाबाश। और ऐसे लाखों करोड़ों अरबों टब हो तो कितनी भाप बनेगी? और हम जानते हैं कि इस नम गर्म हवा को कहीं तो जाना ही है, तो ये कहाँ जाएगी?
5: भाई साहब यहाँ तो नहीं
0: आएगी।
5: अंकल ये गर्म हवा अपने साथ नमी को लेकर ऊपर की ओर जाएगी जहाँ ये ठंडी होकर बादलों में बदल जाएगी
1: और फिर यही बादल बारिश बनकर बरसेंगे। समझ गया। क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का पानी ज्यादा गर्म होता है और जब ये तटीय दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ता है तो ज्यादा नमी हवा में पहुंचती है, फिर यहाँ पर खूब बारिश होती है।
2: शाबाश मानव, अब तो तुम कुछ कुछ समझ ही गए।
0: एल नीनो को वैज्ञानिक एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी कहते हैं।
1: अच्छा अंकल आपने बताया था कि एल नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं तो कमजोर पड़ जाती हैं या फिर रुक जाती हैं या फिर अपनी दिशा बदल लेती हैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक।
1: पर अंकल अगर यही व्यापारिक हवाएं जो सामान्यतः पूर्वी प्रशांत से पश्चिम की ओर बहती हैं अगर इसी दिशा में और तीव्र हो जाए तो क्या होगा?
0: बहुत बढ़िया सवाल किया तुमने मानव, शाबाश। हाँ तो विवेक तुम बताओ, अगर यही व्यापारिक हवाएं जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत में बहती हैं वही और तेज बहने लगे तो क्या होगा?
2: अंकल जब अमेरिका की पूर्वी या कहें ईस्टर्ली हवाएं सामान्य से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं तो ये सामान्य से अधिक गर्म समुद्री पानी को पश्चिम दिशा की ओर धकेलती हैं।
0: हाँ।
2: और पूर्वी प्रशांत के तटीय क्षेत्रों में अधिक ठंडा पानी नीचे से पोषक तत्व लेकर आता है। ये प्रक्रिया एल नीनो के ठीक उल्टी होती है और इसे ला नीना कहते हैं।
1: पर ये ला नीना क्या है?
0: हाँ मानव, ला नीना यानी छोटी बच्ची। ये प्रभाव एल नीनो के विपरीत होता है और दिसंबर से मार्च के महीने में ये अधिक तीव्र होता है।
5: अंकल, अगर ये एल नीनो से उल्टा होता है तो इसके कारण प्रशांत के पश्चिमी तट पर अधिक बारिश और बर्फबारी होती होगी। उत्तरी अमेरिका, कनाडा आदि अधिक ठंडे होते होंगे। अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट पर सूखा पड़ता होगा। अटलांटिक में ज्यादा चक्रवात आते होंगे
1: और भारत में सामान्य से तेज मानसून की बारिश, है ना अंकल?
0: बिल्कुल ठीक सृष्टि और मानव, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी ला नीना के कारण ऑस्ट्रेलिया में औसत से अधिक बारिश और दक्षिण अफ्रीका में भी ज्यादा वर्षा होती है।
4: भाई इस्लाम, ऐसा लगता है कि ये एल नीनो और ला नीना प्रकृति का अपना तरीका है ऊर्जा, पोषक तत्वों आदि का एक संतुलन स्थापित करने का, है ना?
6: एक बात बताइए भाई साहब, क्या हर एल नीनो के बाद ला नीना आती है?
0: नहीं भाभी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एल नीनो के बाद ला नीना ही आए। एल नीनो जहाँ कुछ महीनों से कई वर्षों तक अस्तित्व में रह सकता है, वहीं ला नीना 8 महीने से 12 महीने तक ही रहती है।
6: अच्छा,
0: मोटे तौर पर एल नीनो के मुकाबले ला नीना आधी संख्या में ही दिखी है।
5: अंकल, ला नीना के दौरान भूमध्य रेखा पर भी तो समुद्री सतह का तापमान कम हो जाता होगा?
0: हाँ सृष्टि बेटे, ला नीना के दौरान समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से थोड़ा कम दर्ज किया गया है।
4: यानी एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ता है और ला नीना के दौरान तापमान कम होता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही सूर्य प्रकाश भाई, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं, एक गर्म तो एक ठंडा।
1: सच में अंकल, महासागर और वायुमंडल का संचरण भी कमाल है। पर भैया, आपने चक्रवात के बारे में तो बताया ही नहीं।
2: मानव, कुछ अगली बार के लिए भी तो छोड़ दे।
5: अरे ये तो कमाल हो गया।
6: क्यों, क्या हुआ सृष्टि?
5: अरे हमारे मानव ने इतनी देर से ये कहा ही नहीं कि उसे सब कुछ पता है।
6: सृष्टि,
1: अरे दीदी, अब मैं ये जान गया हूँ कि सब कुछ पता करना तो किसी के बस में नहीं है, और वैसे भी जीवन में नया नया सीखना तो हमेशा चलता ही रहता है।
6: अरे वाह, मानव तो बहुत समझदारी की बातें करने लगा है।
0: बहुत अच्छे, और ये बिल्कुल सच है कि कुछ नया सीखना जीवन से जुड़ी प्रक्रिया है। शाबाश मानव।
5: कमाल है, अचानक से हमारा मानव इतना समझदार कैसे हो गया?
1: अरे दीदी, वो इसलिए क्योंकि मुझे सब पता जो है।

0: धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 24वीं कड़ी सुन रहे थे, कभी जानू कभी ना जानू।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: तुझे
1: क्या
0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: Doctor?

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी

के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: solo Shalva.
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम,

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 एफएम। सौ शर्त मंजूर, सिंगर्स पलक मुच्छल एंड मोहम्मद इरफान, म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय संजीव चतुर्वेदी, लेबल टिप्स ऑफिशियल। सो लेट्स लिसन टू इट ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हम रोज 29 की रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं ना तो वापस 29 होती है।
2: हाँ?
1: हाँ?
2: मतलब
1: हमारी 30 नहीं आ रही है तितली।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी है।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ,
3: दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हमारी संबंधित कुछ गलत फहमियाँ हैं या यूँ कहें कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, आइए उनको दूर करते हैं और जानते हैं। लोगों में महावारी को लेकर कई गलत भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे कि महावारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
1: महावारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
0: महावारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
1: महावारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
0: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
1: महावारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं, तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
0: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो, तब तक महावारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
1: बहुत से लोगों के पास उनके महावारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी महावारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.

0: So where are you? The world is here at Sharda University.
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
3: केटो डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू।
4: अरे बीबी जैसी पहले थी वैसी फिट हो जा।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोले। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई कोट बड़ी पेंदी हुंदी जे, फिर ना क्यों दस्या नहीं, ते मुड़ के जे कितने मेरे वांगू फड़े गए ना, ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी, मैं तो ट्यूशन बारे पूछण आया सी।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: Beautiful songs, Inqilabi Ziddi from the movie Gandhi Talks, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, vocals Shreya Ghoshal, lyrics Kumar, only on Sharda 90.8 FM, Inqilabi Ziddi।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Chori chori dekhe.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नॉर्थ।

0: मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?
2: टीम तारा है तैयार।
3: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी।

0: और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी।
1: है ना शिपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
2: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 111666 पर संपर्क करें।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महामारी के दौरान टैम्पोन के प्रयोग के कारण भी होता है। हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
3: ये कुछ विशेष प्रकार के टैम्पोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
2: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
3: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
2: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
8: बिल्कुल सोचा है पापा।
7: क्या सोचा है?
8: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
7: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
8: जी पापा।
7: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
8: हाँ पापा बिल्कुल।
9: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
10: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।